जीवन में शांति चाहते हैं तो वो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। यह वाक्य हमें बताता है कि जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों की शिकायतें करते हैं तो हम अपने जीवन में नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इससे हमारे जीवन में तनाव, चिंता और अशांति बढ़ सकती है। खुद को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बदलते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कारपेट बिछाने की सादृश्यता हमें बताती है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने आप को बदलना अधिक आसान और प्रभावी है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे सूर्य की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज ये साल 2026 जून महीने का रविवार दिन और तारीख है 21। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक एल ताली और तकनीकी अभियंता तीन योग। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले कार्यक्रम पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। 6:40 सुनिए गालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिया पता नहीं दालेग न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इंटरटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन दालेग न्यूज़।

7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8 बजे सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्र समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

0: मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The National

आकाशवाणी ईटानगर का रन एफ एम 103.1 MHz है। तो दोस्तों, ये सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। सुनिए कार्यक्रम भक्ति गीत।

दोस्तों ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव स्टार्ट शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी ईटानगर का RUN FM 103.1 MHz है। अब आप सुन पाएंगे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम।

आकाशवाणी ईटानगर हिलो लुई पोल ग आलो हम ये गोला लो के नान जूत आर हो के गलो में के नग में मिलन जिदक नंगो दक्ष पेते मलो पश्चिम बंगाल दिवस आलो हुगली डिस्ट्रिक्ट तारकेश्वर लो लोदुम गदक आलो लो मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में आलोक जितु लोदुम आलो लो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम किसान स्कीम ग 23rd नान इंस्टॉलमेंट जिलेन दगला आइन मुर्को 18,880

नमस्कार दोस्तों, गालू दालिक न्यूज सुनने के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और अब वक्त हो चला है हमारी रोजाना की सेहत और ऊर्जा से भरपूर कार्यक्रम सुबह सवेरे का। उम्मीद करती हूं कि आपका दिन एक प्यारे से मुस्कान के साथ शुरू हुआ होगा और अगर अभी भी नींद पूरी तरह से नहीं खुली है तो कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनट हम साथ बिताएंगे और धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को तैयार करेंगे।

दोस्तों, अक्सर हम अपने मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूलते, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना नहीं भूलते, लेकिन सबसे जरूरी चीज यानी खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। दिन भर काम, पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां और कई तरह की व्यवस्थाओं के बीच हम अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक हर सपना, हर लक्ष्य और हर जिम्मेदारी को पूरा करना आसान होता है। तो आज की सुबह सवेरे में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सरल व्यायाम के बारे में जो घर पर ही किया जा सकता है। जानेंगे सेहत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और बीच बीच में सुनेंगे कुछ मधुर गीत। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ।

दोस्तों वाकई में बहुत ही प्यारा गीत था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे और मैं हूं आपके अपने साथी आरजे याजू। अब जरा अपने आसपास नजर डालिए, बाहर की हवा, सुबह की रोशनी और सुबह की बारिश और प्रकृति की ताजगी कुछ अलग ही एहसास देती है। लेकिन सच कहूं तो आजकल हमें से बहुत से लोग बहुत सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, मैसेजेस देखते हैं और बिना जाने ही दिमाग को काम पर लगा लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिन की शुरुआत मोबाइल के बजाय अपने शरीर के साथ की जाए तो कैसा रहेगा? सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने कंधों को धीरे धीरे आगे और पीछे घुमाइए। बहुत सारे लोग कंधों और गर्दन के दर्द की शिकायत करते हैं, खासकर वो लोग जो अधिक समय कंप्यूटर या मोबाइल पर बिताते हैं। इसके बाद गर्दन को धीरे धीरे दाएं और बाएं मोड़िए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब दोनों हाथों को सामने लाकर मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए। इस छोटी सी क्रिया और उंगलियों और कलाइयों में रक्त संचार बेहतर होता है। दोस्तों एक और बहुत अच्छा व्यायाम है मार्चिंग इन प्लेस, यानी एक ही जगह पर खड़े होकर धीरे धीरे चलने की क्रिया। इससे पैर सक्रिय होते हैं, हृदय की गति संतुलित रूप से बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। ये सब करने के लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 5 से 10 मिनट भी आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। और अब वक्त हो चला है अगले गीत का।

साथ काम करती है। रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ऊर्जा का स्तर भी सुधारने लगता है। लेकिन पैदल चलना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी लाभदायक है। कभी कभी जब हम परेशान होते हैं या किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, तब कुछ देर खुली हवा में चलना मन को हल्का कर देता है। प्रकृति के बीच बिताया गया समय तनाव को कम करने में मदद करता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि छोटी दूरी के लिए पैदल चल सके। अगर आप घर पर हैं तो सुबह या शाम कुछ समय निकलकर चलने की आदत डालिए। अब बात करते हैं एक और सरल व्यायाम की, हील रेजेस। सीधे खड़े हो जाइए और धीरे धीरे अपनी इड़ियों को जमीन से ऊपर उठाइए। कुछ सेकंड रुकिए और फिर नीचे आ जाइए। ये व्यायाम पैरों को मजबूत बनाने और संतुलन सुधारने में सहायक माना जाता है। इसी तरह साइड लेग लिफ्ट्स भी किया जा सकते हैं। एक पैर पर संतुलन बनाते हुए दूसरी पैर को धीरे से साइड में उठाइए और फिर नीचे लीजिए। याद रखिए, किसी भी व्यायाम का उद्देश्य शरीर को तखाना नहीं बल्कि सक्रिय बनाना होता है। और अब आपके लिए एक और मधुर गीत।

आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे थे अपतने दैलिक में हमारा विशेष समाचार बुलेटिन, और अब समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम का जो है आप सभी का मनपसंद मॉर्निंग इंफोटेनमेंट शो। दोस्तों अगले कुछ मिनट हम और आप साथ बिताएंगे जहां होंगी ढेर सारी बातें, आज के दिन का हसीन इतिहास, देश और दुनिया की ताजा खबरें और बिल्कुल लाजवाब संगीत। तो चलिए इस खूबसूरत सुबह की आगाज करते हैं एक बेहद प्यारे और खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, इस गाने ने तो सुबह की मिजाज ही बदल दिया। श्रोताओं, अब वक्त है जानने का कि आज का दिन इतिहास के लिहाज से कितना खास है। आज 21 जून है और चलिए देखते हैं कि इस तारीख को दुनिया भर में क्या बड़ी घटनाएं घटी थी। आज ही के दिन साल 2015 में पहली बार पूरी दुनिया ने एक साथ इंटरनेशनल योगा डे मनाया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की इस पहल को 177 देशों का समर्थन मिला था। तब से लेकर आज तक हर साल 21 जून को पूरी दुनिया फिटनेस, मेंटल पीस और होलिस्टिक हेल्थ के लिए योगा प्रैक्टिस करती है। आज पूरी दुनिया वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मना रही है। इसकी शुरुआत साल 1982 में फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ कल्चर जैक लैंग ने की थी। इसका असली मकसद यह है कि संगीत के जरिए लोग बिना किसी भेदभाव, बॉर्डर या लैंग्वेज बैरियर के एक दूसरे से जुड़ सके और अमन और शांति का पैगाम फैलाएं।

नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी हमारे इस हिस्से में आजकल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में इसे समर सोल्स्टिस कहा जाता है, जहां सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है और दिन सबसे ज्यादा देर तक रोशन रहता है। बेनजीर भुट्टो का जन्म आज ही के दिन 1953 में कराची में हुआ था। उन्होंने आगे चलकर हिस्ट्री बनाई जब वो किसी भी मुस्लिम मेजोरिटी नेशन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर चुनी गई। उनका पॉलिटिकल करियर ग्लोबल पॉलिटिक्स में महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। इन हसीन ग्लोबल यादव और इतिहास के बाद चलिए एक और बेहतरीन गाना सुनते हैं, फिर आएंगे हमारे प्यारे भारत के इतिहास पर।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने ग्लोबल हिस्ट्री की बात की, अब जरा नजर डालते हैं हमारे प्यारे भारत के उन पन्नों पर जो 21 जून को जुड़े हैं। आज ही के दिन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में फाइनेंस मिनिस्टर डॉ मनमोहन सिंह के साथ मिलकर बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी एलपीजी लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू किए गए, जिसने इंडियन इकोनॉमी का पूरा चेहरा बदल दिया। दिल्ली का प्रसिद्ध बिरला टेम्पल यानी लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, उसकी प्रतिष्ठा और नियमित दर्शन से जुड़ी कई विशेष प्रथाएं आज ही के दिन यानी 1939 से शुरू हुई थी। ये टेम्पल हमारी सेक्युलर आइडेंटिटी का बहुत बड़ा सिंबल है, क्योंकि बापू ने शर्त रखी थी कि यहां हर जाति और धर्म के लोग बिना किसी रोक टोक से आ सकें।

भारत के स्पेस सेक्टर में आज ही के दिन इसरो के जरिए मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट मिशन जो बाद में कल्पना एक के नाम से जाना गया कि कोर ऑपरेशनल प्लानिंग और टेक्निकल माइलस्टोन को एक्सेलरेट किया गया था। इसने भारत के वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर वार्निंग सिस्टम को एक नए लेवल पर पहुंचाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जरिए आजादी के आंदोलन के दौरान जून के इस हफ्ते में साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा का सपोर्ट जोड़ना शुरू किया गया था। इस मोबिलाइजेशन ने आईएनए यानी आजाद हिंद फौज को आजादी की लड़ाई में एक नया मोड़ और मजबूती प्रदान की थी। इतिहास की इन दिलचस्प बातों के बाद चलिए आपको सुनाते हैं आज का ये तीसरा गाना, जिसके बाद हम सीधे चलेंगे आज की

0: दोस्तों, संगीत के सफर के बाद अब वक्त हो चला है हमारे आज के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट का। आज के द नेशनल टाइम्स के न्यूज़पेपर में क्या बड़ी और अहम खबरें हैं, आइए उन्हें पूरे डिटेल में जानते हैं। द अरुणाचल टाइम की पहली हेडलाइन से 100 जॉइंट्स प्रोटेस्ट रैली इन मणिपुर अगेंस्ट किलिंग ऑफ 6 नागा सिविलियंस। श्रोताओं, मणिपुर के इम्फाल में एक बहुत बड़ा और व्यापक प्रोटेस्ट मार्च देखने को मिला है, जिसे कई ट्राइबल बॉडीज और ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर ने लीड किया। कुछ समय पहले जो 6 नागा सिविलियंस की बहरहमी से मौत हुई थी, उस पर अभी तक कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया गया है। इस रैली में सैकड़ों लोग रास्ते पर उतरे, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए और सरकार से डिमांड की है कि कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द आइडेंटी करके अरेस्ट किया जाए और विक्टिम फैमिलीज को पूरा जस्टिस मिले। बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी और हारमोनी बनाए रखने के लिए ये मामला इस वक्त काफी अहम बना हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन लॉजेस कंप्लेंट्स विद एसीबी ओवर एलिजिबल सबस्टैंडर्ड वर्क मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एक फॉर्मल विजिलेंस कंप्लेन दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स और कम्युनिटी हॉल्स के डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उनमें बहुत ही खराब क्वालिटी यानी सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही पब्लिक टैक्स के पैसे का भारी मिसयूज और एम्बेजलमेंट किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड की है कि पूरे प्रोजेक्ट की टेक्निकल ऑडिट और फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। सेंट्रल बैंक 16 फिक्स दो स्ट्रक कॉम्बिनेशन साइटिंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने पब्लिक सेफ्टी के हित में एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। देश भर में ऐसी 16 फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन के मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह से बैन लगाया है, जो मार्केट में कॉमन पेन किलर्स, कफ सिरप्स और एंटी एलर्जिक मेडिसिन के रूप में चल रही थी। एक्सपोर्ट ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के जांच में पाया गया कि इन दवाओं का कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है और ये मरीजों के लिए डेंजरस साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है, इसलिए बिना डॉक्टर की प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई ना ले। तो श्रोताओं, ये थी आज के न्यूज़पेपर से अहम और विस्तारित खबरें और सुबह की कुछ यादगार बातें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे तगिन श्रोताओं का कार्यक्रम या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से।
1: सी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ईटानगर से लोग तगिन प्रोग्राम का मकाव गए लाइनिंग अभिनतम गए न सी आगा रहा है। मुयु सैटरडे अलोलो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुगली डिस्ट्रिक्ट तर्केश्वर लो

sobam kune paschim banga divas lo ajila achile besar piu ale besobam jipaku alabim palindoko ho coaching beso program lo ke india ga jungo dogolo railway agriculture rural development fishery oka animal husbandry sector de denga alava development la sangmoduba developmental project de denga ka loan jipaku हो कोचिंग बे प्राइम मिनिस्टर निमी सो प्रोग्राम लोक अक्कनी करोर गो रंगो मदोंग दुने नी दे दे गे लगा बे पीएम किसान स्कीम गे 23rd इंस्टॉलमेंट गा रिलीज जिला मुरको 18,880 करोर गो रंगो मदोंग दुने गा पामुदु बे रिलीज जिपको अला बिम्पाल इंदुको अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बरिने लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक नी मनंग मनंग सो पोलो ग 12th इंटरनेशनल योगा डे ग लगाब ग्रीटिंग्स गा पोता जी पको अलबिम पालिंग दोको गवर्नर नि मी बिम पाको नम गा सो पोलो ग थीम गा योगा फॉर हेल्थ एजिंग ब पर्बिंग जिला पर्बिंग जी पको अलबिम पालिंग दोको निगा उंगुकुने ओके इमीदे देंगा अतुबोगा आयाकना अलेवा मेंटेन्दुबे गवर्नर निमे मनंग मनंगा योगा रिलाके अला बिम्पा लिंदुको किलो सटरडे आलुलो ईटानगर गे लोक भवन लो वेस्ट बंगाल गे स्टेट फाउंडेशन देंगा कल्चरल प्रोग्राम गा कातम जिला अच्छले बसरपियो अलेवा सोबम जिपकु अला बिम्पा लिंदुको अरुणाचल प्रदेश लो बंगाली कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन गा कातम जिला स्टेट लो एजुकेशन हेल्थ और सोशल सर्विस गा अलब संगमु संगनम गा गवर्नर निमे अच्छले ब हरते किनो ला रितु को अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट दे लो किलो सैटरडे आलो लो जन कल्याण शिविर गा सरपियो अलब सोबम जिपको सो डिस्ट्रिक्ट दे दे सी सियांग डिस्ट्रिक्ट बोलेंग अपर सुबनसिरी ग सिप्पी की पान्योर ग यजली और लोअर सुबनसिरी ग हरी नम्पम लो सोबम जी दुंग दुको अलाबिम पालिन दुको सो प्रोग्राम लोक सरकारी ग लोक डिपार्टमेंट दे दे का लको बरीला अवेयरनेस कम कैंपेन ओक बेनिफिशियरीज ओरिएंटेड असिस्टेंट ग चिमा पामान ग चिमुदुब लको बसी रिदोंग जी दुको अलाबिम पालिन दुको जून पोलो ग 15th लोक अरुणाचल प्रदेश लो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गा रिदोंग जी दुको चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू नी एलिजिबल वोटर्स दे देंगा सो SIR लो अलब पार्टिसिपेट ला अतुबोग अमीन गा लंगमो लाक अला बिम्पा लिंजी दुको अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ग BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स आदि सिजे नाम नाम लो अंगला वोटर्स वेरिफिकेशन गा रिदोंग जी दुको अरुणाचल प्रदेश लो लोकल प्रोडक्ट गा अलब संगमुदुब DEPG डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी पापुम पारे किलो फ्राइडे आलो लो ईटानगर ग DC कॉन्फ्रेंस हॉल लो रिव्यू मीटिंग गो दोंगपाम गो पापम जी पको अलाबिम पालिन दुको सो मीटिंग लो लोकल प्रोडक्ट्स दे देंगा कमाइम ब एक्सपोर्ट ला मार्केट लिंकेज मधुब सो मीटिंग रिदुंग पको अलाबिम्पा लिंदुको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ग अरालो सो एक्सपोर्ट ना अलब रिमुदुब सब कमिटी गो आको मधुब पापुम पारे ग डिप्यूटी कमिश्नर लोपसांग सिरिंग निमे बिम्पा लिंदुको सिलोग तागिन यूनिंग बिनसेका हबो तैयार ने दिया अलबाई

स्वागत है आप सबका फिर से आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तागिन दैलिक में हमारा समाचार बुलेटिन, और अब वक्त हो चला है हमारे आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण सेगमेंट का। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज 21 जून 2026 है, यानी पूरी दुनिया आज इंटरनेशनल योगा डे मना रही है। हम सबकी बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ में योगा की क्या अहमियत है और हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ये क्यों जरूरी है, इसे विशेष विषय पर चर्चा

0: चर्चा करने के लिए आकाशवाणी आज लेकर आया है एक बेहद खास कार्यक्रम। इस विशेष विषय पर हमने बातचीत की हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद कुमार से, जिन्होंने योगा डे की महत्व और इसके बेनिफिट्स के बारे में विस्तार से बताया है, और उनसे ये खास बातचीत की है हमारे इंटरव्यूअर पूनम अग्रवाल ने। तो चलिए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं इस बेहद ज्ञानवर्धक और खास इंटरव्यू की तरफ। सुनिए ये विशेष प्रसारण। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम और मैं हूं पूनम, आपसे जुड़ रही हूं ईटानगर स्टूडियो से। आज यानी 21 जून को पूरी दुनिया मनाने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि यह स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन जीने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। इसी विशेष अवसर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आज हम आपसे डॉक्टर अरविंद कुमार पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है?
1: थैंक यू मिसेस पूनम। जैसा कि आपने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई, चूंकि ये भारत की एक प्राचीन धरोहर है और प्राचीन जो ऋषि मुनियों ने योग सूत्रों के बारे में, योग दर्शन के बारे में लिखा है, तो उसी को आत्मसात करते हुए भारत ने इस चीज़ की पहल की और यूनाइटेड नेशंस में अपने प्रस्ताव को रखा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कोई विशेष दिवस को अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की जाए। तो यूनाइटेड नेशंस ने भारत की इस पहल को स्वीकार करते हुए सन 2014 में 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और उसी के बाद लगातार हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। और ये जो वर्तमान में 2026 में जो योग दिवस मनाया जाएगा, ये इसी कड़ी का 12वां संस्करण होगा, यानी कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। और अगर हम देखें तो किसी भी दिवस को मनाने का उद्देश्य जैसे साफ होता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि इस एक दिन को लेकर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज या कुछ ऐसे योग से संबंधित कार्यक्रम करें जिससे कि दुनिया भर के लोगों के बीच योग के बारे में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो। और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि योग भारत की प्राचीन धरोहर है, तो इसी एक दिवस के बहाने ये एक संदेश जनमानस को जाता है कि योग क्या है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अपने जीवन में इसको अपनाने से क्या लाभ हो सकते हैं।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छे से हमें बताया। तो आपसे एक और प्रश्न है कि जैसे आज के समय में योग क्यों जरूरी है? जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि तेज रफ्तार जिंदगी में, आप ये बताइए कि हमें योग की आवश्यकता पहले से भी अधिक क्यों महसूस हो रही है?
1: इस प्रश्न का जवाब तो आपके प्रश्न में ही छुपा है। जैसा कि आपने बोला कि तेज रफ्तार जिंदगी, तो प्राचीन समय में तो रफ्तार जिंदगी बहुत कम थी, तो योग तब भी था लेकिन उसकी आवश्यकता उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी क्योंकि लोग धरातल से ज़्यादा जुड़े हुए थे। और चूंकि अब जीवन शैली लोगों की चेंज हुई है, जैसे कि तनाव यानी कि स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी और अनियमित जीवन शैली जो हमारा लाइफस्टाइल एंड मॉडिफिकेशन जो हुआ है, और इसकी वजह से जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और योग का जो बेसिक कंसेप्ट है, योग किसी बीमारी के लिए नहीं ऐसे बताया गया है, लेकिन हमारा जो तनाव, चिंता और जो अनियमित जीवन शैली को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी, क्योंकि जी। योग करने से तनाव कम होता है, शरीर लचीला बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की होती है वो बढ़ती है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि मानसिक जो शांति है या फिर जो बैलेंस है, सामंजस्य है, उसको योग बनाए रखने में बहुत मदद करता है। तो कुछ मिनट का नियमित योग अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में करना शुरू करे तो उससे उसकी जीवन की गुणवत्ता में बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाए जा सकते हैं।
0: जी। तो आप सर ये बताइए कि अक्सर युवाओं को लगता है कि योग केवल बुजुर्गों के लिए है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ी एक गलत फहमी कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले सवाल में भी ये डिस्कस किया कि जीवन की तेज़ रफ्तार, तो जीवन की तेज़ रफ्तार अक्सर युवाओं में ही देखी जाती है। तो
0: जी
1: सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक्चुअली युवाओं को है, लेकिन सोसाइटी में हम देखते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग जो हैं कंपेरेटिवली ज़्यादा फ्री रहते हैं युवाओं की तुलना में। तो उनको लगता है कि योग उनके लिए है कि वो सुबह शाम फ्री हैं, वॉक करते हैं, पार्क में जाते हैं, तो उनको योग करना चाहिए। उनको बीमारियां भी ज़्यादा हैं बुजुर्गों को, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर युवावस्था से योग का अभ्यास किया जाए तो वृद्धावस्था में होने वाली जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो होंगी ही नहीं, या फिर अगर होंगी तो एक नेचुरल वे में वो हो सकती हैं, लेकिन उसका कोई पैथोलॉजिकल वेरिएंट जिसकी वजह से उनकी उनका जो बुढ़ापा खराब हो या बेड रिडन हो जाए और बहुत उनको एक्सटेंसिव मेडिकल केयर से गुजरना पड़े, उसको मतलब कि उससे बचा जा सकता है। तो इसलिए युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये उनकी गलत फहमी है। यही हमारा योग दिवस मनाने का उद्देश्य है, उसी के माध्यम से ये चीज़ें धीरे धीरे अभी जनता को समझ में आ भी रही हैं।
0: जी, तो अगर कोई व्यक्ति अभी योग शुरू करना चाहे तो कौन कौन से आसन या योगासन ये सब कर सकते हैं, या प्राणायाम जो कि एक इंसान को शुरुआत में करना चाहिए?
1: देखिए, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी कोई भी एक कॉमन प्रोटोकॉल सभी के लिए यूज़फुल नहीं हो सकता। जैसे कि बच्चों के लिए कुछ अलग वेरिएशंस होंगे, महिलाओं के लिए कुछ अलग चीज़ें होंगी, वृद्धों के लिए अलग होगा, और कोई व्यक्ति अगर छोटी मोटी किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल होगा, और कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए अलग होगा। तो इसलिए योग प्रशिक्षक की देखरेख में ये सब चीज़ें निर्धारित की जानी चाहिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे कॉमन योगा प्रोटोकॉल की बात आती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सारी दुनिया को प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो वो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि उसमें ऐसी चीज़ें रखी गई है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर पाए। तो उसमें अगर आसनों की बात करें तो साधारण जो ताड़ासन है, वृक्षासन है, भुजंगासन, वज्रासन, ये आसनों की प्रैक्टिस की जा सकती है। कुछ आसन खड़े होकर करने वाले हैं, कुछ बैठ के करने वाले हैं, कुछ लेट के करने वाले हैं, तो इन आसनों से सामान्यतः किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आसन के साथ साथ प्राणायाम की बात करें तो उसमें अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा प्रचलित है। किसी से भी बात करें, उसने कभी किया नहीं हो भले ही, लेकिन उसने अनुलोम विलोम का नाम ज़रूर सुना होगा, और ये एक प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो यही सामान्य चीज़ें हैं जो कि वो इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में अपने जीवन में धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि नाम लेने की बजाय अगर इसका लाइव वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन हो तो दर्शकों को, श्रोताओं को ज़्यादा लाभ होगा, बिकॉज नाम से पता नहीं चलता है कि उसमें क्या करना है।
0: जी। तो सर जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बन चुका है, तो क्या योग इसमें मदद कुछ कर सकता है?
1: जी, योग का जो प्राथमिक उद्देश्य तो मानसिक शांति ही है, बिकॉज योग के जो 8 अंग बताए गए हैं, यम नियम से लेकर समाधि तक, उसमें से शुरू वाले जो 2 हैं वो यम नियम, वो तो मानसिक अवस्था या एक्सेप्टेंस जो होती है, एक मेंटल मेंटल क्लैरिटी जो होती है, उसी से जुड़े हुए हैं। तो वो तो शुरुआत है। तो क्योंकि शरीर से तभी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है जब उसका मन स्वस्थ हो। तो ध्यान और प्राणायाम मुख्य रूप से जो अष्टांग के जो 2 अंग हैं वे मन को शांत करते हैं, और जब शरीर में जब मानसिक शांति यानी कि मानसिक तनाव जब कम होता है तो बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बैलेंस्ड रहता है, जिससे कि एक पॉजिटिव एनर्जी, या जिसे कहें कि हम एक वर्क कॉम्पिटेंसी बढ़ती है। और नियमित योग करने वाले व्यक्ति के अंदर मानसिक रोग जैसे कि चिंता, अवसाद, अनिद्रा जैसी समस्याएं कम देखी जाती है।
0: जी। तो सर जैसे कि हमने बूढ़ों के बारे में, युवा अवस्था के बारे में जाना, वैसे बच्चों और महिलाओं के लिए अगर देखें तो नियमित योग से वो क्या लाभ उठा सकते हैं?
1: बच्चे देखिए शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे विकास की अवस्था में होते हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: योग के जो 8 अंगों में से अंतिम 2-3 अंग अगर छोड़ दें तो प्रारंभिक जो चार से पांच अंग जो है, यम नियम आसन

0: प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 500 बच्चों में बहुत अच्छे से करवाए जा सकते हैं और इनसे उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही बेहतर तरीके से होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, तब भी नेचुरल में जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ चलने से उनका और अच्छे से विकास होगा और एक हैबिट फॉर्मिंग चीज़ होती है, हैबिट बिल्डिंग, तो वो भी बच्चों में विकसित होगी, ताकि उनको बाद में युवावस्था में वृद्धावस्था में मोटिवेट ना करना पड़े योग करने के लिए, अगर वो उनको बचपन से ही अच्छी आदतें जैसे हम सिखाते ही हैं जनरल
1: जी
0: वैसे।
1: जी जी
0: और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के अंदर जो विशेष रूप से जो हार्मोनल इम्बैलेंस की जो समस्याएं पाई जाती है, जो
1: जी
0: कि उनकी शारीरिक अवस्था मीनार्की यानी कि 12-13 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक ज़्यादा जो प्रोमिनेंट रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस महिलाओं में देखने को मिलते हैं, प्रेगनेंसी होती है, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं जो कि अक्सर पुरुषों में या वृद्धावस्था में या बच्चों में नहीं देखे जाते हैं, तो वो एक विशेष अवस्था है उनकी शरीर की, तो उसमें उस संतुलन को बनाए रखने के लिए योग बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसमें दवाइयों का रोल एक बहुत ही सीमित समय के लिए, यानी कि दवाई लेंगे तो तब तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहता है, लेकिन उस संतुलन को बनाए रखने के लिए दवाइयों का सहारा लेना उचित नहीं है, इसलिए
1: जी
0: योग से उनके हार्मोनल संतुलन को अगर सही रखा जाए तो उनकी बाकी जो शारीरिक जो फिटनेस है और मानसिक स्वास्थ्य है और इनको स्पेशली जो गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी की जा सकती है।
1: जी तो सर जैसे हर चीज़, जैसे हम दवा या कोई भी चीज़ लेते हैं तब कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस हमें बताई जाती है, सावधानियां बरतनी होती है, तो योग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए?
0: योग में भी देखिए कि जैसे कि आसन प्राणायाम है और हठ योग में और भी क्रियाएं हैं कुछ, तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रीकॉशंस हैं, लेकिन कॉमन प्रीकॉशंस कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कि लोगों का टाइमिंग है, लोगों को लोग योग तो करना चाहते हैं और वो सीख भी जाते हैं देख के, या लेकिन उनको ये नहीं पता कि खाना खाने के बाद करना है या पहले करना है या सो के उठ के करते हैं, सब लोगों को यही है कि सुबह जल्दी उठ के करना चाहिए, तो हमेशा पेट जो है आपका जो योग करने से पहले पेट खाली होना चाहिए, अगर आप सो के उठे हैं तो फ्रेश होकर ही योग करना चाहिए, या इन बिटवीन अगर फ्रेश होने जैसी अगर अवस्था आती है तो फ्रेश हो जाना चाहिए, उसके बाद आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, साफ तो होना ही चाहिए लेकिन शांत भी होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन योग करते समय ना रहे। उसके अलावा कुछ लोग जोर जबरदस्ती से योग करना चाहते हैं, उनसे नहीं हो पा रहा है कोई आसन मान लीजिए, तो वो उसको करने
1: जी
0: का
1: जी
0: प्रयास करते हैं, और या फिर उनको लगता है जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो लोगों को लगता है कि जितना मैं ज़्यादा सूर्य नमस्कार करूँगा या करूँगी या कर सकता हूँ उतना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या मैं उतना ज़्यादा हेल्दी हूँ, तो इस टाइप की चीज़ें योग में रिकमेंडेड नहीं है, उनको अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए एक सीमित दायरे में योग का अभ्यास करना चाहिए, और अगर उनको कोई बीमारी है मान लीजिए कि डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है या कैंसर है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो उस बीमारी के उपचार के साथ अलाइन करना चाहिए योग को,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: बहुत सारी चीज़ें योग में ऐसी होती है कि किसी पर्टिकुलर बीमारी में हो सकता है कि उनके लिए यूजफुल नहीं होकर नुकसानदायक भी हो सकती है।
1: जी जी
0: उसके बाद नियमितता, अब कुछ बार कुछ क्या होता है कि लोग कर लेते हैं 2-4 दिन करते हैं फिर एक बड़ा लंबा गैप आ जाता है, फिर कुछ दिन करते हैं फिर गैप आ जाता है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। और उसके अलावा जैसे आसन जनरली करते हैं तो लोग श्वास जो होता है
1: जी
0: उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उससे उनका पूरा फोकस आसन पे चला जाता है, फिजिकल एक्टिविटी पे, तो श्वास को भी की लय को भी बनाए रखना है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि योग करते समय हर व्यक्ति को ध्यान में रखने चाहिए।
1: जी तो सर आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश तो बड़ा ही साधारण और साफ है कि योग दिवस के बहाने हम सब लोग योग करते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक दिन तक सीमित नहीं रखते हुए उसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का प्रयास सभी को करना चाहिए, और ज़्यादा नहीं तो 15, 20 या 30 मिनट तक योग करने की आदत बनानी चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि स्वस्थ शरीर, शांत मन और बेहतर जीवन, यही योग का वास्तविक उद्देश्य है।
1: बहुत ही सुंदर जानकारी आपने, तो इस अगर हम बात करें आज का जो योग के बारे में, तो योगा दिवस में हमने जैसे सीखा कि हमें रोज़, आपने बताया कि योग करना चाहिए, योग के बारे में हमें इतना कुछ आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।

0: तो जैसे ये हम जो योग है ये हर इंसान कर सकता है, आपने जैसे बताया, तो हम अगर देखें तो सबसे छोटी उम्र अगर हम लें तो कितनी उम्र तक योग शुरुआत एक कर सकता है इंसान?
1: मुझे लगता है कि 5 से 7 साल का बच्चा जो कि भाषा को समझने लग जाता है, इंस्ट्रक्शन को समझने लग जाता है, तब उसको योगा करवाना शुरू कर सकते हैं। तो जनरली 5 साल का बच्चा समझने लग जाता है और 7 साल तक का बच्चा तो अच्छे से समझने लग जाता है, तो वहाँ से योग प्रारंभ कर सकते हैं।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आइए हम संकल्प लें कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देंगे। इसी संदेश के साथ मैं पूनम आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।
1: धन्यवाद।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंटरनेशनल योगा डे पर पूनम अग्रवाल और डॉक्टर अरविंद कुमार के बीच हुई ये बेहद ज्ञानवर्धक और खास बातचीत। उम्मीद है कि आपको इससे योगा के महत्व और उसके फायदों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसके साथ हमारे आज के इस मॉर्निंग सेगमेंट का समय यही समाप्त होता है, लेकिन आप आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए क्योंकि अब वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग से आने वाले हमारे विशेष समाचार बुलेटिन। दिल्ली और शिलांग की उन ताजा खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा। आपके इस दोस्त और आपके आरजे को दीजिए इजाजत। आप सभी का दिन शुभ हो, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आकाशवाणी ईटानगर का 103.1 MHz है। नमस्कार।

0: श्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
1: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से

0: सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
1: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले हारमूज फिर बंद जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी 23 से फिर आगे बढ़ेगा दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद। प्रतिमाओं में स्मृतियां हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग ईटानगर, आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलांग से हमारा समाचार बुलेटिन, और अब समय हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जो है आप सभी का बेहद पसंदीदा प्रोग्राम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों आज का ये हेलो ईटानगर बेहद खास है क्योंकि आज 21 जून 2024 को पूरी दुनिया एक ऐसी शख्सियत को सलाम कर रही है जिसके बिना हमारे जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। जी हाँ, आज फादर्स डे है। माँ अगर जन्नत है तो पिता उस जन्नत का दरवाजा है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उस भीड़ बड़ी दुनिया में बिना डरे खड़े रहना सिखाता है। एक पिता उस छत की तरह होता है जो खुद धूप, गर्मी और बरसात झेलता है ताकि उसके बच्चे हमेशा महफूज रहे। वो अपनी ख्वाहिशें दबा देता है ताकि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सके। उनका गुस्सा ऊपर से भले ही सख्त दिखे पर अंदर से उनमें हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फिक्र और बेइंतहा प्यार होता है। तो चलिए इस बेहद इमोशनल और प्यारे सुबह की शुरुआत करते हैं पापा के नाम एक बेहद खूबसूरत और दिलों को छू लेने वाला गाने के साथ। सुनिए और अपने पापा को याद कीजिएगा।

दोस्तों इस गाने ने तो सच में आंखों में आंसू ला दिए। दोस्तों हेलो ईटानगर के इस एजुकेशनल सेगमेंट में आज चलिए थोड़ा गहराई से जानते हैं कि इस दिन को मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसका असली महत्व क्या है। फादर्स डे मनाने का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेरिका में साल 1910 में शुरू हुआ था। इसके पीछे सोनोरा स्मार्ट डोट नाम की एक महिला की बहुत बड़ी कहानी है। सोनोरा के पिता विलियम जैक्सन स्मार्ट एक सिविल वॉर वेटरन थे। जब सोनोरा की मां का देहांत हो गया तो उनके पिता ने अकेले ही सोनोरा और उनके पांच भाई बहनों को बहुत ही प्यार डिसिप्लिन और मुश्किलों से पाला। सोनोरा को हमेशा लगता था कि अगर दुनिया में मदर्स डे मनाया जाता है तो उन पिताओं के लिए भी एक दिन होना चाहिए जो अकेले अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने इसलिए एक लंबी मुहिम चलाई और उन्हीं के कोशिशों की वजह से 19 जून 1910 को पहली बार वाशिंगटन में फादर्स डे मनाया गया। बाद में साल 1972 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस दिन को एक ऑफिशियल नेशनल हॉलीडे घोषित किया और तब से हर साल जून के थर्ड संडे को पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जाने लगा। सो टुडे ऑन 21st June 2026 वी आर कंटिन्यूइंग दैट ब्यूटीफुल ट्रेडिशन। पिता के इस बेमिसाल संघर्ष को याद करते हुए चलिए सुनते हैं आज का दूसरा गाना जो

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर हेलो ईटानगर। श्रोताओं, साइकोलॉजिकल और सोशल साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया है कि एक बच्चे की ग्रोथ में उसके पिता का रोल कितना बड़ा होता है। बचपन से ही एक बाप अपने बच्चे को इमोशनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देता है। स्टडीज कहती है कि जिन बच्चों का अपने पिता के साथ एक स्ट्रांग और हेल्दी रिलेशन होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आगे चलकर काफी हाई होता है और वो लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में ज्यादा बेहतर होता है। पिता सिर्फ पैसे कमाकर घर चलाने वाला इंसान नहीं होता, वो हमारा पहला रोल मॉडल होता है। हमारी लोकल ट्राइबल सोसाइटी में भी, चाहे वो निशी हो, गालो हो या तागिन हो, पिता को हमेशा क्लैन और परिवार का सबसे बड़ा पिलर माना जाता है, जो हर संकट में सबसे आगे ढाल बनकर खड़ा रहता है। हम अक्सर अपनी माँ से तो प्यार जता देते हैं, पर पापा से कह नहीं पाते। आज का दिन वही मौका है, उनके पास जाइए, उनके हाथ पकड़िए और बस उन्हें थैंक यू कहिए और सब चीजों के लिए जो उन्होंने बिना बोले हमारे लिए की है। चलिए इस इमोशनल नोट पर सुनते हैं आज का तीसरा और आखिरी गाना, जो हर बाप और बच्चे के रिश्ते को अमर

0: दोस्तों ऐसे गाने सुनकर दिल सच में बढ़ाता है। दोस्तों हेलो ईटानगर की स्पेशल सेगमेंट में आज हमने बाप के उस अजीम रिश्ते को सलाम किया जो हमारे जिंदगी का असली आधार है। अगर आपके पापा आपके पास है तो आज उनका दिन खास बनाइए, और अगर वो दूर है तो उन्हें कॉल करके उनकी आवाज जरूर सुनिए। बने रहिए मेरे यानी आपके आरजी याजू के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर पर। अगले सेगमेंट लेकर जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए अपने पापा का ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। यह आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है, जहां होते हैं दिल से दिल के पास। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। मेरी नजर से देखो
1: तो यार, मेरी मंजिल। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। देश के

0: किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। दो वर्ष में एक बार होने वाला ये महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और एआई फिल्में प्रदर्शित की गई। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए कल जिला मुख्यालय जम्मू में 75 डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंजीकरण की सुविधा महाजन हॉल, शालामार और तवी नदी तट जम्मू में उपलब्ध होगी। साधुओं के लिए निर्धारित केंद्र गीता भवन, परेड और श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू है। गैर ई केवाईसी पंजीकरणों को ई केवाईसी पंजीकरणों में परिवर्तित करने का कार्य रेलवे स्टेशन जम्मू और यात्री निवास भगवती नगर जम्मू में किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माहे में मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। वहीं बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारतीय का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become largest community celebration day because of yoga.
2: 21 June ka ye din, Prithvi ke kuch bhubhag par saal mein sabse lambi avdhi ka din hota hai. और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
1: The Prime Minister said yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit. Since the inception of the International Day of Yoga in 2015, Mr. Modi has led celebrations from various locations including New Delhi, Chandigarh, Lucknow, Mysuru, New York, Srinagar and Vishakhapatnam. President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar.

0: Meanwhile, several union ministers, organizations, and eminent personalities are participating in yoga sessions across the national capital region to celebrate the 12th Annual International Day of Yoga. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda today attended the Yoga Day celebrations at Shantipath. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participated in a yoga session at Nehru Park in New Delhi. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya also participated in the International Day of Yoga celebrations at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Actor Akshay Kumar joined the Sports Minister in the yoga session. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata today, designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers. The vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination will be conducted today. It will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held in the afternoon from 2 to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems jammers, CCTV frisking staff and biometrics. The NTA said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has said that 3 Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz yesterday and are en route to India. The 19th Mumbai International Film Festival will draw to a close today. The biennial festival of documentaries, short fiction, animation and AI cinema began on 15 June and will conclude tonight. The closing ceremony scheduled to take place this evening at Mumbai's Rabindranath Mandir. The best films will receive 18 awards across the international and national competition categories, carrying a total prize money of 45 lakh rupees along with trophies and certificates. India A will take on Sri Lanka A in the tri-series cricket final scheduled to be played in Dambulla today. The match will start at 10 in the morning. Smarting from an ill-tempered defeat in their previous match, India A will look to settle scores when they take on Sri Lanka A in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: Prakriti ki baat आकाशवाणी के साथ
2: ये आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत के प्रयासों पर चर्चा इस संवाद में भाग ले रही हैं जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नर्सरी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार
3: श्रोताओं नमस्कार असम ने इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं आपको हम बता दें कि असम के नागांव जिले की जुमरमुर ग्राम पंचायत ने स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया और एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिष्ठित सम्मान दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया जिसके अलावा आपको हम बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित हुगरी जान ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है और इसी तरह से असम के सोनितपुर जिले की न्यू नापाम ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और श्रोताओं आज हमारे साथ हैं नागांव जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और जुमरमुर ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत सचिव सनकदान नर्सरी आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
4: नमस्कार
3: गीतांजलि जी सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये पुरस्कार मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ और जब पहली बार आपने इसके बारे में जाना तो कैसी भावनाएं थी आपकी
4: पहले मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ वास्तव में यह न केवल जुमरमुर पंचायत के बल्कि पूरे नौगांव जिले की और आसाम के लिए एक गर्व का बात है जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जिले के नाम घोषणा

0: गई तो मेरी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसी सफलता का पूरा श्रेय जम्मू मूल की आम जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और हमारे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पाई गई है।
1: श्रद्धांजलि, आपको जब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से हमारा राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन, और अब तैयार हो जाइए अपनी सीट की पेटी बांधने के लिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है एक ऐसे सफर का जहां मिलेगी गौरव, ग्लैमर, थोड़ा सा ड्रामा और ढेर सारी धांसू खबरें। जी हाँ, शुरू होने जा रहा है आप सभी का सबसे पसंदीदा सिनेमैटिक सेगमेंट फिल्मी गपशप। अगले कुछ मिनटों हम और आप घूमेंगे बी टाउन की चमकती गलियों में, जहां बात होगी सबसे बड़ी आने वाली मूवीज की, चल रही शूट्स की और उन ताजी अफवाहों की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग लगा रही है। तो चलिए इस फिल्म में सुबह का शानदार आगाज करते हैं इस साल कुछ बेहतरीन गीत के साथ। दिल ठंडक कीजिए और सुनिए ये लाजवाब ट्रैक।

दोस्तों वेलकम बैक टू फिल्मी गपशप। चलिए सीधे चलते हैं बॉलीवुड के उन बड़े सेट्स पर जहां इस वक्त सबसे बड़ी खिचड़ी पक रही है। बीटाउन के सबसे बड़े गलियारे के से सबसे बड़ी खबर यह है कि इस साल ब्लॉकबस्टर और मैसिव फ्रेंचाइज फिल्म्स का बादल छाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर की। उनके आने वाली मेगा बजट माइथोलॉजिकल एपिक फिल्म की शूट इस वक्त हाई गियर में है। इंटरनेशनल लेवल के वीएफएक्स टेक्नीशियन को बुलाया गया है ताकि आने वाली स्क्रीन्स पर एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया जा सके। फैंस लगातार सोशल मीडिया पर उनके लीक्ड लुक्स को लेकर क्रेजी हो रहे हैं। इसके साथ ही वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के कैंप से खबर आ रही है कि ऋतिक रोशन अपने आने वाले एक्शन थ्रिलर सीक्वेंस के डेंजरस स्टंट सीक्वेंस को रैप अप कर चुका है। इस बार एक्शन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा रो और पिटी होने वाला है।

दोस्तों, किंग खान यानी शाहरुख खान के फैंस के लिए एक बेहद बड़ी और ऑनगोइंग अपडेट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआरके ने एक नए एक्शन ड्रामा प्रोजेक्ट के स्क्रिप्ट को ग्रीन लाइट दे दिया है और इसकी शूटिंग फॉरेन लोकेशन पर बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हर कोई देखना चाहता है कि उनका अगला अवतार क्या होने वाला है, क्योंकि वो लगातार अपनी फिल्मों के रूप बदल रहे हैं। दूसरी तरफ एक्शन किंग सलमान खान के सेट से खबर है कि उनके आने वाली बड़ी मास एंटरटेनर फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क फुल स्विंग में है। डायरेक्टर और उनकी टीम डे नाइट बैठकर एडिट पर काम कर रहे हैं, ताकि फेस्टिव सीजन पर जब ये फिल्म थिएटर्स में आए तो सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्सेस दोनों जगह हल्ला मच जाए। चलिए भाईजान और किंग खान की इस एनर्जी की बात सुनते हैं आज का ये तीसरा गाना।

दोस्तों, संगीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड के पावर कपल्स और उनकी चल रही फिल्मों की। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेकर एक बड़ा नया बस चल रहा है। दोनों को एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है और इंडस्ट्री के इनसाइडर सोर्सेस कहते हैं कि ये दोनों एक बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा में फिर से एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिख सकते हैं। फैंस इस आइकॉनिक जोड़ी को दोबारा देखने के लिए पिछले कई महीनों से वेट कर रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में इस वक्त फ्रेश पेयरिंग के दौर चल रहा है। कार्तिक आर्यन और रश्मिका मंदाना के नए प्रोजेक्ट के बारे में सोशल मीडिया पर लगातार डिस्कशन हो रही है। उनकी फिल्म के गाने और लुक टेस्ट इस वक्त फाइनल स्टेज में है और कहा जा रहा है कि ये साल की सबसे बड़ी रोम कॉम बनने जा रही है। आइए इस रोमांटिक गपशप के बीच सुनते हैं एक और दिलों को छू लेने वाला गाना।

दोस्तों, अगर किसी एक जॉनरे ने पूरे बॉलीवुड को इस वक्त अपने कब्जे में ले रखा है तो वो है मैरो फिल्म्स का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। स्त्री 2 और भेड़िया के मेगा सक्सेस के बाद अब उनके नए कैरेक्टर बेस्ड हॉरर फिल्म्स पर काम चल रहा है। वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के कैमियोज को लेकर रोज नई स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है। ऑडियंस को ये हॉरर और कॉमेडी का मिक्स इतना पसंद आ रहा है कि अब हर बड़ा प्रोड्यूसर इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं। इसके साथ ही आलिया भट्ट की आने वाली फीमेल लेड एक्शन फिल्म का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और सेंसर बोर्ड ने उसे पास करके इसका ग्रैंड डिजिटल लॉन्च भी कर दिया है। आलिया ने इस फिल्म के लिए संयम से बहुत ही कठिन फिजिकल ट्रेनिंग ली है। चलिए, इस धमाकेदार खबर के बाद सुनते हैं आज का ये अगला गाना।

वेलकम बैक टू फिल्म गपशप दोस्तों. अब बात उस बदलाव की जो पूरे इंडियन सिनेमा को एक कर रहा है, यानी साउथ और नॉर्थ का महाकोलैबोरेशन. पैन इंडिया मूवीज का क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा. डायरेक्टर SS राजामौली, प्रशांत नील और एथली के नए बॉलीवुड टाइप्स को लेकर मुंबई के बड़े होटल्स में लगातार मीटिंग्स चल रही है. खबर है कि रणवीर

कपूर और विक्की कौशल के नए कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट पर बड़े डायरेक्टर्स ने सिग्नेचर्स ले लिए हैं। ये कहानियां सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर लिखी जा रही है। इंडियन सिनेमा अब सच में वर्ल्ड वाइड दंगा बजा रहा है। चलिए इस ग्लोबल

दोस्तों संगीत के सफर के बाद आइए बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चल रही हलचल की। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और जियो सिनेमा पर इस वक्त बड़े बॉलीवुड स्टार की डायरेक्ट डिजिटल फिल्में और मेगा वेब सीरीज की जारी लगी हुई है। सैफ अली खान और मनोज बाजपेयी जैसे वेटरन एक्टर्स अपने नए सीजन की शूटिंग अलग अलग स्टेट्स में कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद थिएटर्स का जलवा बरकरार है। प्रोड्यूसर्स अब समझ गए हैं कि ऑडियंस को अगर बड़े पर्दे पर लाना है तो कंटेंट में दम होना चाहिए, इसलिए यूनिक स्क्रिप्ट राइटर्स की डिमांड इस वक्त बी टाउन में सबसे ज्यादा है। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं हमारा ये अगला गाना।

0: दोस्तों, अब हम आ गए हैं फिल्म गपशप के आखिरी पड़ाव पर और बात अक्षय कुमार की हो ना हो ऐसा कैसा हो सकता है। खिलाड़ी कुमार ने बड़े में, के बारे में चल रही ताजा खबर यह है कि उन्होंने अपने नए सोशल ड्रामा फिल्म की शूट को रिकॉर्ड ब्रेकिंग 40 डेज में रैप अप कर लिया है और अब वो अपनी अगली बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइज के लिए तैयार हो रहे हैं। उनकी कॉमेडी फिल्मों का इंतजार हर एक फैमिली ऑडियंस को रहता है। इन सभी बड़ी खबरों और ऑनगोइंग अपडेट से साफ है कि बॉलीवुड इस वक्त अपने सबसे सुनहरे और बदले हुए दौर से गुजर रहा है, जहां सिर्फ स्टार पावर नहीं बल्कि अच्छी कहानियों की जीत हो रही है। तो दोस्तों, आज की फिल्मी गपशप सेगमेंट में बस इतना ही। बी टाउन की चमकती दुनिया से ताजा अपडेट्स लेकर मैं कल फिर हाजिर होंगी आपके पास। आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए आपका अपना और हर दिल अजीज स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, फिल्मी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter.
2: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath main Ravi Kapoor. देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
3: विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले INS अग्रे

0: और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्त चित्र, लघु कथा, एनिमेशन और एआई फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become largest community celebration day because of yoga.
2: 21 June ka ye din, prithvi ke kuch bhubhag par saal mein sabse lambi avdhi ka din hota hai. और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
1: The Prime Minister said yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit. Since the inception of the International Day of Yoga in 2015, Mr. Modi has led celebrations from various locations, including New Delhi, Chandigarh, Lucknow, Mysuru, New York, Srinagar and Vishakhapatnam. President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar. Meanwhile, several union ministers, organizations and eminent personalities are participating in yoga sessions across the National Capital Region to celebrate the 12th annual International Day of Yoga. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda attended the Yoga Day celebrations at Shantipath. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participated in a yoga session at Nehru Park in New Delhi. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya also participated in the International Day of Yoga celebrations at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Actor Akshay Kumar joined the Sports Minister in the yoga session. Special yoga programs were organized across Uttar Pradesh. Governor Anandibhen Patel performed yoga at Raj.

0: आकाशवाणी के सभी दोस्तों को मेरा यानी आपके आरजे याजू का प्यार भरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से हमारा राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन और अब वक्त हो चला है हमारा आज के आखिरी कार्यक्रम का, जो है आप सभी का अपना बेहद खास और दिलों के सबसे करीब रेडियो जवान।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड एक ऐसा सेगमेंट है जहां हमारी और आपकी बातें होती है, जहां आपके पसंद हमारी आवाज बनती है और आपके भेजे गए खत और रिक्वेस्ट इस पूरे शो की जान होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की ख्वाहिशों का ये सिलसिला।

दोस्तों आज के इस सफर की शुरुआत हम करेंगे कल के एक दो पेंडिंग रिक्वेस्ट के साथ। कल वक्त की कमी की वजह से हम इस गाने को पूरा नहीं चला पाए थे, इसलिए आज सबसे पहले इसी गाने से शुरुआत होगी। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है नाहरलगुन से एक अनजान दोस्त ने। उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, पर उन्होंने एक बेहद प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। एक माँ का जो प्यार होता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। आप चाहे उनसे कितने ही दूर क्यों ना हो, उनका आशीर्वाद और उनका आंचल हमेशा एक ढाल बनकर आपके साथ रहता है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप यहाँ उन्हें इतना मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी माँ भी आपको उतना ही मिस कर रही होंगी। वो आपसे उतना ही प्यार करती है जितना कि आप उनसे करते हैं। कल वक्त की पाबंदी ने हमें रोक दिया था और हम इस गाने को पूरा नहीं बजा पाए थे, पर आज कोई रोक टोक नहीं है। ये गाना आज फिर से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप इस संगीत के जरिए उनकी मौजूदगी को और गहराई से महसूस कर सके। मूवी तारे जमीन पर से सुनिए ये बेहद इमोशनल गाना मेरी माँ आपके लिए।

इस गाने को सुनकर हर बार दिल भराता है। नाहरलगुन वाले हमारे दोस्त, उम्मीद है इस गाने ने आपके दिल को थोड़ा सुकून जरूर पहुंचाया होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कल की पेंडिंग रिक्वेस्ट पर, जो आई है हमारे एक बेहद लॉयल और प्यारे लिसनर की तरफ से। उनका नाम है हितेंद्र दास और वो हमें सुन रहे हैं सोनबिल कुडाली असम से। हितेंद्र जी ने एक बड़ा ही खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है अपने सभी दोस्तों को और साथ ही साथ हमारे इस आकाशवाणी परिवार के सभी स्टाफ मेंबर्स को। हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे आकाशवाणी परिवार को अपना समझते हैं और इतना प्यार देते हैं। आपकी पूरी टीम की तरफ से और आपके दोस्तों की तरफ से ये गाना अब सीधा प्ले हो रहा है आपके लिए। मूवी बॉडीगार्ड से राहत फतेह अली खान की आवाज में तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी।

हितेंद्र जी, आपकी चॉइस सच में लाजवाब है। दोस्तों, ये तो थी हमारी कल की पेंडिंग रिक्वेस्ट जो हमने पूरी की। अब बारी है आज के नए मैसेजेस और आपकी ताज़ा रिक्वेस्ट की, जिन्हें मैं अभी लेकर होती हूँ हाजिर।

और आज का पहला मैसेज मेरे साथ है, उसे पढ़कर मेरे दिल सच में भर गया, भर आया। ये मैसेज हमें भेजी है हमारी डेली लिसनर गुमे मई बागरा जी ने, हिगी बागरा से। गुमे जी ने आज हमें एक बेहद इमोशनल मैसेज लिखा है। उन्होंने बताया कि आज वो अपनी माँ और पापा दोनों को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनके माता पिता दोनों डेफ और म्यूट थे, यानी वो ना बोल सकते थे और ना ही सुन सकते थे, लेकिन गुमे जी ने लिखा है कि उनका दिल बहुत ही खूबसूरत था। गुमे जी, आपकी ये बात सीधी दिल को छू गई। पता है दोस्तों, जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनकी आवाज, उनका भाषण नहीं बल्कि उनका बर्ताव और उनका साफ दिल होता है। वो भले ही दुनिया की बातें ना सुन पाए हो या आपसे बोलकर प्यार ना जता पाए हो, पर उनका दिल इतना सच्चा और काइंड था कि उन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए और इतना काबिल बनाया। माता पिता का प्यार किसी आवाज का मोहताज नहीं होता, वो तो बस एक एहसास है। गुमे जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके अना अबू जहां भी है, उनका आशीर्वाद हमेशा एक फरिश्ते की तरह आपके ऊपर बना हुआ है। वो आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। आपकी इस खूबसूरत और इमोशनल बात पर आपके प्यारे अना अबू की याद में लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बेहद सुकून देने वाला गाना, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी माँ, सिर्फ आपके लिए। ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग।

माँ के चरणों में है सारे दम। सच में इस गाने का एक एक लफ्ज रूह तक उतर जाता है। गुमे जी, उम्मीद है आपके दिलों को इस गाने से बहुत सारा सुकून मिला होगा। दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड पर ख्वाहिशों का पिटारा अभी भी खुला है। आप सभी के और भी बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले मैसेज की तरफ, जो आया है हमारी अपनी राजधानी ईटानगर से। ये रिक्वेस्ट भेजा है गोकर रिबा ने। और दोस्तों, गोकर ने जो गाना चुना है वो हमारे अरुणाचल के एक बहुत ही ब्रिलियंट और दिलों पर राज करने वाले आर्टिस्ट का है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रितो रिबा की। गोकर सुनना चाहते हैं रितो रिबा का बेहद ही इमोशनल और खूबसूरत गाना नुमाबे। गोकर, आपकी चॉइस तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। हमारे लोकल टैलेंट का ये इंटरनेशनल लेवल का गाना जब भी बजता है रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो चलिए, ईटानगर के हमारे दोस्त गोकर की रिक्वेस्ट पर पूरे अरुणाचल के संगीत प्रेमिसेस के लिए प्ले करते हैं ये सुपरहिट ट्रैक रितो रिबा की आवाज में नुमाबे।

दोस्तों इतोरिबा की आवाज में जो दर्द और जो डेप्थ है वो सच में सीधे दिल पर वार करती है। गोकर उम्मीद है आपको अपना ये फेवरेट गाना सुनकर मजा आया होगा। चलिए ईटानगर से ही एक और खूबसूरत मैसेज मेरे स्क्रीन पर है। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है मार्गी दिर्ची ने। मार्गी ने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो भी हमारी अपने स्टेट की एक बेहद टैलेंटेड और स्वीट वॉइस मीबी नोडू की जी का है। गाना है दिल ये न जाने। दोस्तों हमारे अरुणाचल के आर्टिस्ट इस वक्त जो म्यूजिक बना रहे हैं वो सच में लाजवाब है। मीबी जी की आवाज में एक ऐसी मासूमियत है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मार्गी आपके इस चॉइस ने तो पूरा स्टूडियो का मौसम रोमांटिक और सुहाना बना दिया है। तो चलिए दोस्तों मार्गदर्शी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर ईटानगर से लेकर पूरे स्टेट के लिसनर के लिए पेश है मीबी नोदू का ये बेहद मेलोडियस ट्रैक दिल ये न जाने। सुनिए और इसको महसूस कीजिएगा।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual vivity engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों, क्या सुकून है इस गाने में। मेबी नोदू की आवाज सच में कानों में मिश्री गोल देती है। मार्ग, आपकी वजह से आज सभी श्रोताओं को ये प्यारा गाना सुनने को मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, अब हमारा ये संगीत का काफिला चलता है हमारे पड़ोसी राज्य असम की तरफ। हमें एक मैसेज मिला है विश्वनाथ असम से। बेचने वाले दोस्त ने अपना नाम तो नहीं लिखा है, पर उन्होंने एक ऐसा गाना रिक्वेस्ट किया है जो हम सभी को हमारे 2000 के हसीन दिनों में वापस ले जाएगा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है मूवी क्या दिल ने कहा का टाइटल ट्रैक। दोस्तों, तुषार कपूर और ईशा देओल की इस फिल्म का ये गाना एक जमाने में हर आशिक की जुबान पर होता था। क्या दिल ने कहा, क्या दिल ने सुना, ये लाइन सुनते ही दिल में पुरानी यादें

और पहला पहला प्यार याद आ जाता है। हमारे विश्वनाथ के इस अनजान दोस्त को दिल में भी जरूर कोई पुरानी याद ताज़ा हुई है आज। तो हमारे उस अनजान दोस्त के लिए और आप सभी रेट्रो लवर्स के लिए उदित नारायण और अलका याग्निक की मैजिकल आवाज में ये रहा गाना क्या दिल ने कहा।

तो सुदीप जी और अलका जी की जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। ये गाना सुनकर तो सच में दिल बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो गया है हमारे। विश्वनाथ के दोस्त, आप जहां भी हैं, उम्मीद है आपकी ये प्यारी ख्वाहिश पूरी करके आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड का सिलसिला बिल्कुल जोश और ढेर सारे जज्बात के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए वापस आते हैं हमारे प्यारी राजधानी ईटानगर पर, जहां से हमारी एक और रेगुलर लिसनर ने हमें एक बेहद प्यारा मैसेज भेजा है। ये रिक्वेस्ट आई है सारा कुमार जी की तरफ से। सारा जी ने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो इस जनरेशन का सबसे बड़ा आशिक यानी अरिजीत सिंह का एक ऐसा ट्रैक है जो सीधे रूह को छू लेता है। गाना है मूवी खामोशिया का टाइटल ट्रैक। दोस्तों, इस गाने के बारे में क्या ही कहना, खामोशिया गुनगुनाने लगेगी। ये लाइंस हमें बताती है कि कभी कभी जो बातें हम लफ्जों से नहीं कह पाते वो खामोशी कह जाती है। सारा, आपकी चॉइस सच में बहुत गहरी और लाजवाब है। आपकी इस चॉइस ने पूरे मौसम को एक सुनहरा सुकून में बदल दिया है। तो चलिए ईटानगर से हमारी प्यारी लिस्नर सारा कुमार जी की बेहद स्पेशल रिक्वेस्ट पर पेश है अरिजीत सिंह की आवाज में ये सुपरहिट दिलों का धड़कन खामोशियां।

दोस्तों, गानों का और आपकी प्यारी मैसेजेस का ये सिलसिला इतना हसीन है कि पता ही नहीं चला कब वक्त पर लगाकर उड़ गया। लेकिन अफसोस, अब मेरे घड़ी की सुइयां मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है। समय की पाबंदी के कारण अब मुझे इस शो को यहीं पर समाप्त करना होगा। मैं देख रही हूं कि अभी भी हमारे बहुत से लिसनर के मैसेजेस मेरे पास बची हुई है, जिन्हें मैं आज समय की कमी की वजह से नहीं प्ले कर पाऊंगी। मैं आप सभी से दिल से माफी मांगती हूं कि आज आपका फेवरेट गाना नहीं चल पाएगा। लेकिन आप बिल्कुल निराश मत होइए, ये आपके इस आरजी का वादा है कि आपसे कल जैसे ही हमारा ये शो शुरू होगा, मैं सबसे पहले आपकी इन्हीं पेंडिंग रिक्वेस्ट को प्ले करूंगी और आपके गाने पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सफर को यूं ही यहीं पर रोकते हैं। कल फिर मिलें, फिर से मुलाकात होगी ठीक इसी समय इसी स्टेशन पर, ढेर सारी नई बातें और आपकी मनपसंद धुनों के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन

0: छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
1: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep-water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. Defence Minister Rajnath Singh has said that the tri-commissioning of INS Dunagiri, INS Agra and INS Sanshodhak is going to be a defining moment in India's maritime capability development. In a social media post, the minister said that these state-of-the-art platforms are a testament to the country's robust defence manufacturing ecosystem and its unwavering resolve towards Atmanirbhar Bharat. The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the common yoga protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June the 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become the largest community celebration day because of yoga.
3: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
2: The Prime Minister said yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit. President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar. Meanwhile, several union ministers, organizations and eminent personalities are participating in yoga sessions across the National Capital Region to celebrate the 12th Annual International Day of Yoga. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda attended the Yoga Day celebrations at Shantipath. External Affairs Minister Dr. S. Jay Shankar participated in a

0: श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे थे फिल्मी गीत कार्यक्रम फिल्मी लहर में आरजे लोरी के साथ आकाशवाणी के अरेना FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोता दोस्तों, आपको ये भी बता दो कि हमारे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम और इस सफर को आगे आप सब तक पहुंचाने के लिए प्रसारण निष्पादक पी दौले तथा तकनीकी अभियंता HM भूषण भी। जी हाँ दोस्तों, ये आकाशवाणी का अरेना FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष का जो भी थीम है वो बहुत ही बढ़िया, यानी कि हेल्दी एजिंग। हम अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, इसलिए कहते हैं कि जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज का यह दिन याद दिलाता है कि हेल्दी खाए, हेल्दी जिए और पॉजिटिव लीजिए। तो श्रोता दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं पाश्चात्य संगीत और कार्यक्रम है वेस्टर्न मेलोडीज।
1: To the Western music program only on Akashwani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Today, we are tuning into a collection of songs that help define an era but continue to resonate far beyond it. These tracks are filled with ambition, hope, determination, and the timeless questions that every generation asks. We begin with one of the most recognizable motivation anthems ever recorded. Eye of the Tiger is pure determination in a musical form, a song about resilience, discipline, and getting back on your feet no matter how many times life knocks you down. The opening riff alone is enough to make you feel ready for whatever challenges lies ahead. Eye of the Tiger by Survivor.

आकाशवाणी के एन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता दोस्तों, इस वक्त आप आनंद उठा रहे हैं पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। 12 बजते ही आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा

दोस्तों, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सुनने के बाद अब फिर से हो चला है मेरे साथ सुनने का हिंदी फिल्मी गाने आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और मैं इस सफर में आप सबके साथ हूँ, आरजे नूरी। दोस्तों, सफर बहुत ही सुहाना है क्योंकि अरुणाचल ईटानगर में आज हल्की फुल्की बारिश हो रही है और जून का महीना अगर सोचे तो बहुत ही गर्मी से झुलसता हुआ महीना है। लेकिन हम कितने खुशनसीब हैं अरुणाचल वाले कि जून का महीना है, गर्मी होना चाहिए, लेकिन गर्मी के साथ हल्की पुल्की बारिश ने मौसम इतना सुहाना बना दिया है कि हम भूल जाते हैं कि जून का महीना गर्मी से झुलसने का महीना है। इसलिए ईश्वर को, जिसने भी बनाया है हमारे अरुणाचल को और हमें इस जमीन पर भेजा, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए सफर पर चलते हैं, सुनते हैं सुहाने गाने जो सफर को और भी खूबसूरत बना देगा। शुरुआत करते हैं इस चुलबुले से गीत के साथ।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए मेरे साथ यानी आरजे नूरिया के साथ आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और जो श्रोता इस वक्त जुड़े हैं, आपको फिर से याद दिला दूं कि आप

बने हुए हैं। अरुणाचल की अपनी आवाज आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आनंद उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों, आज रविवार की सुहानी सुबह है और आज का दिन एक और वजह से भी खास है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और साथ ही साथ फादर्स डे भी है। जी हाँ, आज याद करते हैं अपने पिताओं को, और अपने जितने भी जिंदगी में हमारी जिंदगी में पिता समान लोग हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे अंकल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फादर फिगर हैं। आज उनको याद करते हैं और उनको दुआएं देते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं कि वो इसी तरह से हमारी जिंदगी में मीनिंगफुल बना रहे, हमारे लिए मार्गदर्शक बना रहे, हमारे लिए ऐसे इंसान बने रहे जो हमारे लिए ऐसा लगे कि हाँ, हमारे साथ मजबूती से कोई खड़ा है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और साथ ही साथ फादर्स डे दोनों आज मना रहे हैं लोग। आज के दिन हमको ये सोचने का मौका मिलता है कि अपनी जिंदगी को किस तरह से बेहतर बनाएं, मेंटली फिजिकली फिट कैसे रहे, और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं यानी कि हम जब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो हमारी जिंदगी में रोग के लिए यानी कि बीमारियों के लिए कोई जगह ही ना हो, मेंटली हम स्ट्रेस ना रहे। इसलिए योगा दिवस आज ये याद दिलाता है कि किस तरह से हेल्दी एजिंग को अपनाना है। तो जो युवा इस वक्त सुन रहे हैं, आप ये ना सोचे कि आज का ये जो योगा दिवस है वो तो बुजुर्गों के लिए, बिल्कुल नहीं, वो आपके लिए भी। ये याद दिलाता है कि जिस उम्र पर आपके बुजुर्ग माता पिता है, अंकल आंटीज है, वहां पे आप भी कभी ना कभी पहुंचोगे। तो इसलिए अब भी से अपना ख्याल रखना शुरू करें, अपने शरीर का, अपने मन का ख्याल रखना शुरू करें। तो श्रोता दोस्तों, बढ़ते हैं और सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने, क्योंकि हिंदी फिल्मी गाने हमें सुकून देता है, हमें वो एहसास दिलाता है जो कभी कभार हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। गाने सुनकर या गाने सुनाकर एहसास, अपने एहसासों को हम बयान करते हैं। चलिए अगला एहसास हिंदी फिल्मी गानों में।

श्रोता दोस्तों, सफर लंबा है लेकिन अगर सफर में मनचाहा साथी आपके साथ हो जो आपको एंटरटेन करे, आपके फोकस को हिलने न दे और आपको आपके सफर पर जाने के लिए मोटिवेट करे, तो और क्या ही बात है। आकाशवाणी के एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम यही करते हैं। जी हाँ, आप जहां कहीं भी जा रहे हो, जहां कहीं से भी आप हमारे साथ ट्यून इन हो, हम कोशिश करते हैं कि हमारी दोस्ती में यानी कि हमारे प्यार में एक दूसरे को मोटिवेट करें। हमारी कोशिश यही रहती है कि गानों के माध्यम से करें हम आपके साथ दिल से दिल की बात। तो फिल्मी गानों के साथ हमारे दिल की बात आप आनंद उठा रहे थे मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आज के सफर में, और अगला सफर आप सभी के साथ बड़े गर्व के साथ हम पेश करने वाले हैं फौजी भाइयों और बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला। बने रहिए हमारे साथ करने के लिए दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

दोस्तों, सीमा की चौकियों पर तैनात हमारे वीर जवान देश के अलग अलग कोनों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और उनके परिवारों को हमारा बहुत ही प्यारा प्रणाम। आप सुन रहे हैं फौजी भाई और बहनों का कार्यक्रम गीतमाला और मैं हूं आप सबके रेडियो साथी आरजे नूरी और हम शुरुआत कर चुके हैं खूबसूरत गीत इश्क वाला लव से। दोस्तों, प्यार केवल इश्क वाला यानी कि प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम ही नहीं, यानी कि वो भी प्रेम है जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, अपने अपनों से करते हैं। दोस्तों, आज का दिन कई भावनाओं को अपने साथ लेकर आए हैं। आज फादर्स डे है। दोस्तों, पिता एक ऐसा शब्द है जिसमें सुरक्षा है, विश्वास है, त्याग है और अनगिनत दुआएं हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी पिता हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं और बड़े होने पर अपने आशीर्वाद से जीवन की राह आसान बनाते हैं। लेकिन आज मैं खास तौर पर उन फौजी बेटों और बेटियों की बात करना चाहती हूँ जो अपने घर से दूर, अपने माता पिता से दूर देश की सेवा में जुटे हुए हैं। हो सकता है इस वक्त किसी पोस्ट पर खड़े जवान को अपने पिताजी की याद आ रही हो सकता है किसी सैनिक पिता का बेटा या बेटी घर पर उनकी राह देख रहा हो। फौजी जीवन का सबसे बड़ा त्याग यही है कि कई बार अपने सबसे खास रिश्तों के साथ भी त्योहार, जन्मदिन और ऐसे खास दिन नहीं मना पाते। लेकिन यकीन मानिए,

जिस तरह एक पिता अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, उसी तरह हमारे सैनिक पूरे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आज फादर्स डे पर हम उन सभी पिताओं को नमन करते हैं और उन सैनिक पिताओं को भी जो वर्दी पहनकर अपने परिवार से दूर रहकर देश का कर्तव्य निभा रहे हैं और हमारे यानी कि देश की सुरक्षा के साथ साथ देशवासियों का सुरक्षा करने में तैनात है। और उन जवान बेटी बेटियों को भी सलाम जो अपने पिता की सीख और संस्कारों को दिल में लेकर राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो आइए इस विशेष अवसर पर एक गीत समर्पित करते हैं उन सभी पिताओं को, उनके स्नेह को, उनके संघर्ष को, उनकी सीख को और उस मौन प्रेम को जिससे वे अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में व्यक्त करते हैं। पेश है पिताओं के सम्मान में एक विशेष गीत।

श्रोता दोस्तों, फौजी भाई और बहनों का कार्यक्रम गीतमाला में उम्मीद है कि इस गीत ने आपको अपने पिता की यादों से जोड़ दिया होगा। अगर आपके पिताजी आपके साथ हैं तो उसका तो यह आपका सौभाग्य है, और यदि वे आज स्मृतियों में बसते हैं तो उनकी सीख और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। हमारे उन फौजी भाइयों और बहनों के लिए जो इस समय ड्यूटी पर है, एक छोटा सा संदेश आकाशवाणी के और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियोज के तरफ से। आपके माता पिता को आप पर उतना ही गर्व है जितना पूरे देश को है। जय हिंद। अब आगे बढ़ते हैं गीतमाला की अगली प्रस्तुति की ओर, और मधुर गीत के साथ जो आपके इस सफर को और भी यादगार बना देगा। दोस्तों, फादर्स डे के इस खास मौके पर अगला गीत उन सभी बेटियों के नाम जो अपने पापा की आंखों का तारा होती है। कहते हैं बेटी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अपने पापा के लिए वो हमेशा वही नन्ही सी गुड़िया रहती है। उसकी एक मुस्कान पर दुनिया की सारी खुशियां कुर्बान की जा सकती है। पिता और बेटी का रिश्ता बड़ा ही अनोखा होता है। इसमें दोस्ती भी होती है, भरोसा भी, और ढेर सारा प्यार भी। तो आज उन सभी बेटियों और उनके प्यारे पापाओं को समर्पित करते हुए आज सुनते हैं फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ का बेहद लोकप्रिय गीत पापा की परी।

यकीनन इस गीत ने न जाने कितनी बेटियों को अपने पापा की याद दिला दी होगी। जीवन की भागदौड़ में चाहे दूरियां कितनी भी बढ़ जाए, पिता और बेटी के रिश्ते की गर्माहट कभी कम नहीं होती और ये एहसास इस गीत को सुनने के साथ साथ मेरे मन में भी आया है। श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं फौजी भाई और बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला और आज हमने समर्पित किया है इस कार्यक्रम को हमारे फौजी भाइयों के साथ साथ उनके पिता को भी। दोस्तों, फादर्स डे के इस अवसर पर सभी बेटियों से बस इतना ही कहेंगे, अगर मौका मिले तो आज अपने पापा को एक प्यार भरा संदेश जरूर भेजिए। और अब गीतमाला के खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं शानदार नगमा। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और सफर पर आपको फिर से याद दिला दूं, मैं हूं रेडियो साथी आरजे नूरी। दोस्तों, हर पिता की आंखों में अपने बच्चों के लिए कुछ सपने होते हैं, वो सपने जिन्हें वो शब्दों में कम और अपने विश्वास में ज्यादा व्यक्त करते हैं। बचपन में जब हम गिरते हैं तो वही हमें संभालते हैं और जब बड़े होकर जीवन की नई राहों पर निकलते हैं तब भी उनकी दुआएं हमारे साथ चलती हैं। दोस्तों, पिता अक्सर कम बोलते हैं लेकिन उनकी हर सलाह, हर सीख और हर उम्मीद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। और आज फादर्स डे पर हम याद कर रहे हैं उन सभी पिताओं को जो अपने बच्चों की सफलता में अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। तो आइए पिताओं के सपनों, विश्वास और प्यार को सलाम करते हैं, सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक का वो आइकॉनिक सॉन्ग जिसने पीढ़ियों की भावनाओं को आवाज दी है, पापा कहते हैं।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

सचमुच कुछ गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि जिंदगी के कई खूबसूरत अध्याय याद दिला जाते हैं। पापा कहते हैं सुनते हुए, शायद आप में से कई श्रोताओं को अपने विद्यार्थी जीवन के दिन, अपने सपने और अपने पिताजी का कहीं कोई बातें याद आ गई होंगी। आज फादर्स डे पर हमारे आपके पिताजी के साथ हैं, तो आपके साथ कुछ पल जरूर बिताइए। और अगर आप उनसे दूर हैं तो उन्हें फोन कॉल करके बस इतना कहिए कि पापा आपकी सेहत आज भी मेरे साथ है और मजबूती के साथ खड़ा होने में मदद करता है। हमारी ओर से सभी पिताओं को सारे प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ ही आज के फौजी भाई और बहनों का कार्यक्रम गीतमाला यहीं पे समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फादर्स डे के अवसर पर हमने गीत के माध्यम से स्वस्थ परिवार और अनमोल रिश्तों को याद किया जो हमारे जीवन को अर्थ यानी कि मीनिंग देते हैं। सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों, देश की सुरक्षा में जुटे हुए सभी सैनिक भाई और बहनों तथा उनके परिवार को हमारी ओर से स्नेह सम्मान और शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे और सुनते रहे आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब समय हो चला है समाचारों का। कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत किए जाएंगे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी

श्वेता दोस्तों, 1:11 हो रहे हैं और अब वक्त हो चला है समाचारों के बाद सुनने का। वो अनमोल नगमे जो 1960 से लेकर 1980 तक हमारे दिलों में राज करते रहे। मैं हूं आप सबकी रेडियो साथी आर्जुनरी और अगले कुछ पलों में हम आपके साथ मिलकर तय करेंगे एक ऐसा संगीत में सफर जहां हर गीत अपने साथ लेकर आएगा यादों की महक, जज्बातों की गर्माहट और बीते दौर की अनमोल धरोहर। दोस्तों, हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर सिर्फ फिल्मों का दौर नहीं था, बल्कि वह दौर था मधुर धुनों, अर्थपूर्ण गीतों और दिल को छू लेने वाली अदायगी का। आज के इस विशेष अंक में हम सुनेंगे 70, 60 और 80 के दशक के कुछ चुनिंदा सदाबहार नगमे, जिनके मिठास आज भी उतनी ही ताजा है जितनी अपने समय में थी। दोस्तों, इन गीतों के साथ हम याद करेंगे उन कलाकारों को जिन्होंने अपनी आवाज, अपने संगीत और अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को अमर बना दिया। चलिए शुरू करते हैं इस बेहद खूबसूरत गीत से।

श्रोता दोस्तों, 1960s और 70s और 80s के कुछ अनमोल गानों के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर। इस गीत को आप सुन रहे थे फिल्म में मेरी आवाज सुनो, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी, और इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले ने, जिससे इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, म्यूजिक यानी कि संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, और इस फिल्म में जितेंद्र, हेमा मालिनी, उर्मिला भट्ट, राजन हक्सर और पिंचू कपूर, राज मेहरा और ओम शिवपुरी ने इस फिल्म को जानदार बनाया। दोस्तों, आप बने हुए हैं हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम, और सिर्फ फिल्मों का दौर नहीं था जो कि एक ऐसा दौर था जो मधुर धुनों, अर्थपूर्ण गीतों और दिल को छू लेने वाली अदायगी के लिए जाना जाता है, यानी कि 1960s, 70s और 80s। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में खास फिल्में नहीं बनती, लेकिन उस दौर के फिल्मों का ही अंदाज कुछ और ही था, और गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी यादों की परत खुल गई है और हमें उस जमाने की याद आती है जब हम मोबाइल फोन्स में बिजी नहीं रहते थे, बल्कि फिल्मों का इंतजार रहता था और गीतों का रिलीज का इंतजार रहता था बेसब्री से। और आज के जमाने में हम क्या करते हैं, कुछ भी गीत आता है, कुछ भी सुनने को मौका मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और हम इतनी बेचैनी हो गई है कि एक दो मिनट के गाने को हम सुन नहीं पाते। लेकिन उस दौर के गानों में ऐसा जादू, ऐसा कसक और ऐसा खिंचाव था कि 4, 5, 6 और 7 मिनट के गानों को भी बड़े ध्यान से सब मिलकर सुनते थे, और हमारी यही कोशिश है कि उस दौर के यादों को ताजा कर दे आप सबके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

श्रोता दोस्तों, 1960s, 70s और 80s के सुनहरे नगमों के सफर में आप सुन रहे थे मेरे महबूब, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। इस गीत को गाए हैं मोहम्मद रफी ने और संगीत दिया है नौशाद ने, और गीत के बोल है शकील बदायूनी के। और इस फिल्म के स्टार्स थे राजेंद्र कुमार, साधना, अमिता रहमान, अशोक कुमार, निमी, जॉनी वॉकर और प्राण। दोस्तों, पिछले एक साल में यानी कि जनवरी 24, 2025 को इस गीत को अपलोड किया सुपरहिट गाने ने, और इस गीत को इतने सारे व्यूज मिले हैं। आपको लगता होगा कि जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है उस पर ही लोग ज्यादा व्यूज देते, ऐसा नहीं है। पिछले एक साल में 186 के व्यूज इस

गीत को मिला है और कमेंट्स तो 100 से भी ज्यादा है और सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस खूबसूरत गीत ने वो जमाना याद दिला दिया जब सुकून ही हमारा जीवन हुआ करता था। एक यूजर ये कहते हैं कि द सॉन्ग दैट मेड मी अ लाइफ टाइम फैन ऑफ रफी साहब 27 ईयर्स अगो, आई लव दिस लाइव वर्जन द वे ही सेंग इट, वाओ। एंड अगला जो यूजर है वो कहते हैं भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा गया था रवि साहब को, इतना भेदभाव क्यों होता है। और एक यूजर ने ये लिखा है लकी टू हैव बीन एबल टू लिसन टू दिस सॉन्ग फॉर द लास्ट 58 ईयर्स। हाँ जी हाँ दोस्तों, पिछले 58 ईयर्स से ये महाशय सुनते आ रहे हैं इस गीत को और आज भी सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस युग के ही लोग सुन रहे हैं, इस लिस्ट में यानी कि लिसनर्स और जो कमेंट्स कर रहे हैं उन में आज के जमाने के भी लोग लिख रहे हैं। ये कहते हैं कि व्हाई डस दिस सॉन्ग्स मेक मी क्राई। सो दिस आर सर्टन यूजर्स जो आज के जमाने के हैं। तो दोस्तों हमारा मकसद यही है कि उस जमाने के सुकून को आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप तक पहुंचा सकूं। लीजिए सुनिए अगला गीत और सुकून से आंखें बंद करके सुनिए ताकि आपकी जितने भी मुश्किलें हैं, दिल में दर्द है, गुस्सा है, नाराजगी है, वो सारा उरंचू हो जाए।

श्रोताओं से इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे फिल्म आपकी कसम से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, जिसे संगीत से सजा आरदीप बर्मन ने और बोल है आनंद बख्शी की। और इस फिल्म के स्टार्स थे सुपरस्टार राजेश खन्ना, मुमताज, संजीव कुमार, असरानी, रंजीत, जयश्री टी, लोलिता चैटर्जी और केशतो मुखर्जी। दोस्तों, इस फिल्म से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी कसम हमें कई गहरी बातें सिखाती है। कहानी में कमल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन विश्वास नहीं कर पाता। उसका बेबुनियाद शक धीरे धीरे उसके अपने ही घर को उजाड़ देता है। फिल्म दिखाती है कि जहां विश्वास खत्म होता है, वहां प्यार भी कमजोर पड़ने लगता है। कई बार हमारे डर और कल्पनाएं वास्तविकता से कहीं अधिक खतरनाक होती है। कमल का शक किसी सच्चाई पर नहीं, बल्कि उसकी असुरक्षाओं, यानी कि जिस तरह से वो इनसिक्योर थे, उसी पर आधारित था। यानी कि उसका आउटकम क्या हुआ, वह कहीं खो देता है जिसे सबसे ज्यादा चाहता है। तो दोस्तों, फिल्मों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गानों के एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिल्मों में जो हमें सीख मिलती है या फिल्मों के माध्यम से हमें जो सीख देती है, उस पर भी हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए। तो आपकी कसम हमें यही सिखाती है कि इनसिक्योर ना रहें और अपने रिश्ते में ओपन कम्युनिकेशन रखें। और अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है या आपके मन में इनसिक्योरिटीज आ रही है, तो उसका क्या वजह हो सकता है, उसे जरूर एड्रेस करें। तो रिश्ते में एक ओपन कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बस आपके मन में शक आ गया और आप बस उसके शक के बिना पर ही आपने डिसीजन ले लिए। हो सकता है कि आपके शक की वजह से, आपकी इनसिक्योरिटीज की वजह से आप उस इंसान को खो दो जो आपके लिए बना था, आपकी जिंदगी में बहुत ही अहम था। तो चलिए 1960s, 70s और 80s के सुनहरे गीतों में सुनते हैं अगला गीत।

आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आनंद उठा रहे हैं संगीत उस दौर के जहां संगीत सिर्फ संगीत नहीं बल्कि भावनाएं होती थी। आज इन्होंने के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और इस गीत को आप सुन रहे हैं फिल्म कुर्बानी से जिसमें फिरोज खान और जिनत अमान मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया फिरोज खान ने और इसे डायरेक्ट भी उन्हीं ने और इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और गीत को सजाया है यानी कि संगीत से सजाया है बिट्टू ने। और दोस्तों इस गीत को गाने वाली गायिका नाजिया हसन। नाजिया हसन दक्षिण एशिया की सबसे प्रभावशाली पॉप गायिकाओं में गिनी जाती है। उन्हें अक्सर क्वीन ऑफ साउथ एशियन पॉप भी कहा जाता है। मात्र 15 साल की आयु में उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहली प्रस्तुति से इतिहास रच दिया था। दोस्तों जो फिल्म कुर्बानी में शामिल किया गया था गीत यानी कि आप जैसा कोई जिसे आपने अभी आनंद उठाया इस गीत को संगीतकार बिट्टू ने तैयार किया था और इसे पर्दे पर जिनत अमान पर फिल्माया गया था। दोस्तों इस गीत ने भारतीय उपमहाद्वीप में डिस्को संगीत की एकदम बेहद ही नई लहर पैदा कर दी। आप जैसा कोई लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि नाजिया हसन को 1981 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला और वे यह सम्मान पाने वाली पहली पाकिस्तानी तथा सबसे कम उम्र की विजेता बनी। तो दोस्तों इसी तरह के कई गीतों के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे। आज का यह अंक बस यही तक समाप्त होता है लेकिन संगीत का सफर जारी रहेगा आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हिंदी फिल्मी गानों के साथ मेरे साथ यानी रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ।

श्रोता दोस्तों, हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का ये आखिरी गीत और इसके तुरंत बाद ही ठीक 2 बजे ही आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। हम फिर से आप सबके साथ जुड़ेंगे हिंदी फिल्म गानों का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s के साथ 2:30 पर। तब तक के लिए ये सुनते रहे ये आखिरी गीत हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स।

0: to work for the empowerment of tribal communities, disadvantaged groups, especially young girls.
1: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
0: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran from Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Binah 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध। राष्ट्र

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
1: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
2: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रूपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रूपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है।

0: बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगा।

आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित मिडडे न्यूज तथा दोपहर समाचारों के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि 2:30 हो रहे हैं, उसी के साथ ही हम शुरू करेंगे हिट्स ऑफ 90s बॉलीवुड सॉन्ग्स का यह कार्यक्रम। आपको लिए चलती हूँ 90s के दशक की सुनहरी यादों में, जब बॉलीवुड संगीत हर दिल की धड़कन हुआ करता था। आइए शुरू करते हैं उन सदाबहार गीतों के साथ जो आज भी उतने ही लोकप्रिय है, भले ही ओरिजिनल फॉर्म में नहीं, बल्कि कुछ गाने तो रिक्रिएट हुए हैं आज के जमाने के बच्चों यानी कि लिसनर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से उसे रिक्रिएट किया जाता है, लेकिन मूल तो वही है ना, यानी कि बेस तो वही है ना 90s के वो सुनहरे सॉन्ग्स। इस सॉन्ग के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं 90s के सुनहरे गीतों को। दोस्तों 90s के दशक की रोमांटिक धुनों की बात हो और पहला नशा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों यह गीत युवाओं के दिलों की आवाज बन गया था। सुनिए फिल्म जो जीता वही सिकंदर का मशहूर गीत पहला नशा, हमारे इस कार्यक्रम का पहला पेशकश।

आकाशवाणी के 103.1 MHz अरुण FM पर आप सुन रहे हैं यादों की गलियां हिट्स ऑफ 90s और मैं हूं आप सबकी रेडियो साथी आरजे नूरी। दोस्तों, आज का ये दिन थोड़ा अलग है, थोड़ी धीमी है और बहुत सारी यादों से भरी हुई है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें वही ले जाती है जहां से हम आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन दिल वही रह जाता है जहां हमने जिंदगी की सबसे खूबसूरत हसीन लम्हे बिताए हो। और बहुत सारे लोगों के लिए 90 के वो दशक सबसे सुनहरी और सबसे खूबसूरत यादों में से एक है। और हमारा मकसद भी अरुण एफएम 103.1 MHz पर यही है कि उन लोगों तक पहुंचाऊं उनकी यादें, मीठी यादें, और आज के जमाने के लिसनर्स को बताऊं कि कितनी हसीन हुआ करती थी वो जमाना। दोस्तों, याद है वो दौर जब प्यार शब्द नहीं सिर्फ एहसास होता था और उन एहसासों को आवाज देते थे कुछ अनमोल गाने। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं वो गीत जिसने हर दिल को पहली बार प्यार का मतलब समझाया।

यादों की गलियां हिट्स ऑफ 90s आप आनंद उठा रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इन खूबसूरत गीतों को सुनते हुए हमारे मन में कई सवाल आते हैं और कई यादें ताजा हो जाती है और यादें ऐसी कि इन गानों को सुनकर मन में आता है कि वो मासूम सा पहला प्यार आज कहां होगा। अगर वो मासूम और पहला प्यार आपके बगल में बैठा हुआ है या बैठी हुई है तो उसकी आंखों में देखकर कहो कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, धीरे धीरे से आने के लिए और जिंदगी को खूबसूरत और इतना बड़ा बनाने के लिए। और अगर आपकी यादों में कहीं बसा हुआ है, आपके बगल में नहीं है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिए मेरे दिल में प्यार बसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जहां कहीं भी हो मेरा पहला प्यार, वो मासूम प्यार, जिंदगी खूबसूरती से जियो और मेरी जिंदगी और मेरी यादों को भी खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। क्योंकि कहते ना, जिंदगी में पहला प्यार बहुत ही अहम होता है। वही पहला मौका होता है जब हम एहसास करते हैं कि प्यार का मतलब क्या होता है और जिंदगी में हम प्यार करना सीखते हैं। तो दोस्तों, प्यार चाहे आपके बगल में बैठा हो ना हो, लेकिन उस प्यार ने हमें इंसान बनाया, नरम दिल बनाया और मोहब्बत से भरा बनाया। इसलिए शुक्रिया करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश की हर बूंद जो किसी पुराने प्यार की दस्तक देती है, उम्मीद है कि इस वक्त जो सुन रहे हैं मुझे आकाशवाणी के रन एफ 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, बारिश की बूंदों के साथ साथ यादें ताजा कर दिया होगा मैंने। और साथ ही साथ इन गीतों को सुनकर कई ऐसे गीत भी याद आ जाते हैं, खिड़की से बाहर जब झांकते हैं तो बूंदे आपकी खिड़की पर टप टप टिप टिप कर रही है और कई सारी यादें और गाने याद आ जाते होंगे। तो चलिए फिल्म मोहरा का गीत

मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे ये गाने और इनके साथ जुड़ी हमारी यादें। मैं आप सबकी रेडियो साथी आज इनुरी और आप सुन रहे थे यादों की गलियां हिट्स ऑफ 90s आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम फिर मिलेंगे कल 2:30 पर हिट्स ऑफ 90s के साथ। हिट्स ऑफ 90s आज का यह सफर हिट्स ऑफ 90s का यही पे समाप्त होता है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और यादों को जिंदा रखिए और हमारे साथ यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहें, क्योंकि हम करते हैं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में यानी कि 2:58 एंड वी ब्रिंग यू द न्यूज, और न्यूज के तुरंत बाद हम लेकर आएंगे मिशमी श्रोताओं के कार्यक्रम ठीक 3 बजे। 3:15 का समय रहेगा ताई खमती श्रोताओं के समाचार का। हम आपके साथ जुड़ेंगे ठीक 3:30 पर बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। तो श्रोता दोस्तों, कुछ ही पलों में यानी कि 2:58 न्यूज हेडलाइंस के लिए आप तैयार रहे। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और हमारे मिशमी श्रोताओं का और ताई खमती श्रोताओं के समाचार और कार्यक्रम के तुरंत बाद हम फिर से हाजिर होंगे आप सबके साथ, जुड़ेंगे 3:30 पर बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। ये आकाशवाणी का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और सफर में मैं हूँ आप सबके साथ रेडियो साथी आरजे नूरी।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ सुनने को हिंदी फिल्मी गाने। और इस वक्त मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड अपडेट्स। जी हाँ, सिनेमा प्रेमी और तैयार हो जाइए क्योंकि जून 2026 लेकर आए हैं मनोरंजन का एक शानदार पैकेज। कहीं हंसी के धमाके हैं तो कहीं रोमांस की मीठी फुहार, कहीं सस्पेंस का रोमांस तो कहीं रिश्तों की गर्माहट से भरी कहानियां। एक तरफ है बहुप्रतीक्षित वेलकम फ्रेंचाइजी की वापसी तो दूसरी ओर युवा दिलों की धड़कनों को छूने वाली नई प्रेम कहानियां। और अगर आपको थ्रिलर पसंद है तो वो इस महीने आपके लिए रहस्य और रोमांच का भी पूरा इंतजाम है। जी हाँ, बॉलीवुड अपडेट में हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाए नए नए रिलीजेस और जिस फिल्म का इंतजार आप कर रहे थे वो रिलीज कब हो रहा है इसका खबर। तो ये आपके अगले कुछ मिनटों में करते हैं जून 2026 की इन फिल्मों का सफर जिनकी चर्चा इस समय बॉलीवुड गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हो रही है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे नूरी आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, जब पर्दा उठता है तो सिर्फ फिल्म नहीं चलती बल्कि शुरू होती है नई कहानियां, नए सपने और नए एहसासों की दुनिया। और जब 2026 में बॉलीवुड लेकर आए हैं मनोरंजन का ऐसा रंगमंच जहां कॉमेडी का तड़का है, रोमांस की मिठास है और सस्पेंस का रोमांच है, जो परिवार की भावनाओं का खूबसूरत संगम भी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने कौन कौन सी फिल्में सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में मचाने वाली है और मचा चुका है धूम, तो आइए चलते हैं

तो दोस्तों वेलकम टू द जंगल 26 जून को होने वाली है दोस्तों कॉमेडी और धमाकेदार मनोरंजन की बात हो और वेलकम फ्रेंचाइजी का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। तो 26 जून को रिलीज होने जा रही है वेलकम टू द जंगल जो इस लोकप्रिय श्रृंखला की तीसरी कड़ी मानी जा रही है। निर्देशक अहमद खान की इस फिल्म में सितारों की लंबी फौज दिखाई देने वाली है। फिल्म में नजर आएंगे अक्षय कुमार, संजय दत्त और सुनील शेट्टी समेत कई बड़े बड़े स्टार्स। तो हमारा भी इंतजार लगा रहेगा कि कब सिनेमा में ये आएंगे और हम भी हंसी की फुहारें फोड़ेंगे। तो एक्शन, कॉमेडी और भरपूर मनोरंजन से सजी ये फिल्म दर्शकों को हंसी और रोमांच का डबल डोज देने का दावा कर रही है। जिस तरह से हम इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप भी उसी फिल्म का ही रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। है जवानी तो इश्क होना है ये रिलीज हो चुका है। रोमांस और हल्की पल्की कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए 5 जून को हो चुकी ये जवानी। है जवानी तो इश्क होना है जरूर पसंद आएगा। आपके आसपास के सिनेमा घरों में आप जरूर जाकर देखिए। अगर मन में बहुत सारे टेंशन है डेडलाइंस के, यानी कि डेडलाइंस का डर अगर आपको सता रहा हो और जिंदगी में कुछ अच्छा बुरा चल रहा हो जिंदगी में, तो अगर आपको होना है हल्का पुल्का तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। सीरियसनेस या इसमें कोई अगर सीरियस बातें ढूंढने लगोगे तो फिर आप निराश ही घर लौटाओगे। इसलिए हल्का पुल्का और हंसी मजाक वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। इस फिल्म में युवा ऊर्जा और प्यार के रंग देखने को मिलेंगे ये लिखा है। मुख्य भूमिकाओं में है वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर। तो नौजवानों के लिए तो और भी बढ़िया है, अगर बुजुर्गों को भी कुछ हल्का पुल्का देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको गुदगुदा सकता है। तो दोस्तों बॉलीवुड अपडेट्स में बस इतना ही। सुनेंगे एक बेहद ही प्यारा सा गीत और उसके बाद 3:40 पर आपको लिए चलेंगे फिर से आकाशवाणी के ईटानगर के केंद्र के स्टूडियोज की ओर वांछो श्रोताओं के समाचार के लिए। तब तक सुनिए ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

0: आइए चलिए श्रोता दोस्तों सुनते हैं वंचो श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी का रेल एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। बने रहिए हमारे साथ संगीतमय सफर में।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अन्य जून लेन मनी शाम तक देवभार इपोहांसों आजमबाजी पुनी मिनट मुख्य पिछम के वांचो चाय का पां कपई पवा का पाई फाले वांग का वांग सुवे होथम बनानियंग पा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा नि तुसो अन्य इंडिया मोमा चावनु पंगनुई तो जो अंगोत असल बकले बोमा आजा के जंग पों महाजनी थेम अंग योगा फॉर हेल्थी एजिंग ले थमले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हजा मा कोलकाता होनुई रेड रोड होनुई मा अंगोट असोक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा तुसो महाकले बो मा चिपै तम ले हमा सोम योगा एक्सरसाइज होन अंग हाजत हाजत जो खनक नु हक हाइले बो मा मिस्टर मोदी ए हमा वन के जंग वन मा जून लेट नि साम ता तारिक अनि के दिन चावन नु मजैता होनुई तो जंग पु मा नि यक सलो के नि अंग ए सत ताइपु बोमा हाजा नि अथा योगा डे नि अंग एला अनको ले तामताइ ले आचों के कम्युनिटी सेलिब्रेशन नि अंग चु अचंग ले सतना ले चु वन ले अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पर्णय किया स्टेट हेल्थ मिनिस्टर बायु रंबागे नि अनि ईटानगर लोक भवन मा आसो अफो क्या इंटरनेशनल डे ऑफ योगा नि तुसो मा हाकले बोम गवर्नर ए हम वन क्या जंग वन मा इंडिया मा आमी पुव पाचन वन तो खंग ए यौ बंग क्या योगा अथा चावनु यौ ए सावन मई ले तयंगो पुकु मा प्रैक्टिस होन अंकेता आसु अमई क्या होली अंग यौ एला अना बोम मा हया योगा खनकनु याजन ह्यूमनिटी यौ अंग इंडिया एको ओतोन केता गिफ्ट हिंगहो अंग सत्तई पुले वनले बोमा गवर्नर ए हया टू सो मा हक हाई के पार्टिसिपेंट्स थम अंग योगा बा मची ए जा जिंग क्या योगा फॉर कॉमन हेल्थ चैलेंजेस ले अमन क्या बुकलेट लाई चू तम फनले को ओतोन ले कहो मा अजंग बा ईटानगर लोक भवन मा हजा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू सो जीरो होनोई तो क्या इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी होथम ए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स थम फाई आशम थम अन क्या है अपुआ तोंग है अंगोट असोले देश में पंग तो वही अंगोट असो क्या फाई तम ले होथम बन आनियंग पा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू सो अनि तावंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थम ए चू तावंग होनोई मक्या 190 माउंटेन ब्रिगेड सिपाही होथम फाई आशम थम अन क्या ए तावंग होनुई मक्या ग्यालवा संगयांग यत्सो हाई अल्टीट्यूड स्पोर्ट्स स्टेडियम मा हामेजंग मा ले वै अंगोट असो ले हाया तुसो तो चीफ गेस्ट अंग स्टेट इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मिनिस्टर न्या तो दुकम हाईले बो मा हाया योगा सेशन तुसो तो सावन मई ले तयंगो अंग क्या हान पक मा योगा ता खत खा क्या होली अंग यौ एला तय क्या होचा ngai ले अहो ले गवर्नमेंट ऑफिसियल सम सिक्योरिटी सिपाही फो लाइन नो सम नु हिया माउ मामु होमो खोस जु तो क्या जो खनक नु होनु म जो हक हाई ले बकले कहो मा आजं बम हाजा बामा हाला क्या होथम बन आनियंग पा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा तु सो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी होथम ए चु इंक्योंग होनुई मक्या मल्टीपर्पस हॉल हम मा अंगोट असोले यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ए अनि ताम अने ले अंगोट क्या नीट यूजी री एग्जामिनेशन परीक्षा मा अनि मिहक लाक्सा अनि तकु जो लान न सम ए एग्जाम को ल तैले बोमा हाजा एग्जाम हा मैजंग मा ले ला ले थोलन पुकु मक्या पांगनु होली मोकसा दे पुल वन क्या बो मालाइन न सम अंग हजा एग्जाम ताली तो चु अव ए जा हि क्या नु चि तैले मैले को अतोन हई ओले वन ले मिस्टर प्रधान ए हजा का न्यू दिल्ली मक्का होंग तमि थम फाइ वन क्या जंग वन का जे मा ngai वन ले बो मचि ए सीबीएसई एग्जामिनेशन अंग क्या मा अलाइ क्या होता रिजल्ट चु ले मा वै अलाइ ले फा अंग क्या ले वन क्या बो मा गवर्नमेंट ए लाइन नो सम फाइ ताली चु सिंगन तोय ताई นักเตะนักปงโอและขัดและอยู่ตุ้งตังอามงอากันเตะปูเลจูวันได้ก็แม้เนี่ยผมจังปุ่มปันอันยี่เดเวลลอปเมนต์เฮียขนาดนู้นเวลเฟียร์หันปักมุมมกษาอันแก่อาคาอาคันเกษียณมาเดชมาปังนุยโตไว้อังวัดอาโศกยาไผ่ตำและอารุณาจัลประเทศมาจูมันยี่ใจตาหนุยโตจันกัลยันศิวิรตุโสอังวัดอาโศเลก้าวมาอาจังบาจาจันกัลยันศิวิรตุโสเซียงดิสติกโบลิงอัปเปอร์สุบรรณสิริดิสติกซีพีเก

श्रोता दोस्तों, वेलकम बैक टू आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। आप सुन रहे थे वांछित श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से। अगर आप जारी रखना चाहते हैं सुना आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र यानी कि मीडियम वेव, तो आप ट्यून इन कर पाएंगे आकाशवाणी के मीडियम वेव के 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और सुन सकेंगे आगे वांछित श्रोताओं का समाचार। मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर चलिए चलते हैं एक और सुनहरे सफर पर फिल्मी गानों के।

श्रोता दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक यानी कि आप सुन पाएंगे ठीक 4 बजे एरू मिशमी श्रोताओं का समाचार और गीतों का सफर जारी रहेगा मेरे साथ ही आरजे नरी के साथ आकाशवाणी के एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे एरू मिशमी श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आकाशवाणी के ईटानगर के एफ एम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफ एम पर चलिए फिर से शुरू करते हैं हिंदी फिल्मी गानों का सफर मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। और आप सुन रहे थे कुछ ही पल पहले ईदू मिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।

श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों, हमारा सफर बहुत ही सुहाना रहा 11:10 से लेकर। हमारा जो सफर है वो जारी रहेगा 4:20 पर, यानी कि हमारी दूसरी प्रसारण सभा। और हमारी दूसरी प्रसारण सभा का ये आखिरी सेगमेंट है, यानी कि हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का सेगमेंट ये आखिरी है, लेकिन सफर जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के कार्यक्रम में, सुनते हैं अगला गीत। दोस्तों, हिंदी फिल्मी गाने हम बस गाने नहीं होते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमारी जिंदगी हिंदी फिल्मी गानों के बिना जैसे अधूरा है। और आपको भी लगता होगा कि गाने नहीं होते तो हम अपने एहसासों को, अपने इमोशंस को कैसे बयां करते। कभी कभार हिंदी फिल्मी गाने ही, यानी कि फिल्मी सॉन्ग्स ही हमारे इमोशंस की जुबान बनते हैं, इसलिए हम इतना रिलेट कर पाते हैं हिंदी फिल्मी गानों से। हर ओकेजन के लिए, हर दर्द के लिए, हर खुशी के लिए, हर सेलिब्रेशन के लिए गाना होता है। चलिए देखते हैं अगला गीत आपके कौन से इमोशंस को टच करता है। फिर से बता दूं, आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

इसीलिए तो हिंदी फिल्मी गाने इतने रोमांटिक होते हैं और इतने एहसास भरे होते हैं कि हम अपने इमोशंस को गानों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए केवल हिंदुस्तानियों को नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को हिंदी फिल्मी गाने पसंद है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में आज के जमाने में लोग हिंदी फिल्मी गानों को रिक्रिएट करके किस खूबसूरती से पेश करते हैं। बड़ा गर्व होता है जब हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी फिल्मी गाने हमारे जीवन का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये आखिरी गीत मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ, जो हमारा सफर 11:10 से 4:20 तक का है। और आपको बता दूं कि इस खूबसूरत सफर को मुझे यानी आरजे नूरी के बस इतने में ही आप सबसे अनुमति लेनी होगी, लेकिन सफर जारी रहेगा RFM 103.1 MHz पर अगले आरजे यानी आप सबकी चुलबुली सी प्यारी सी आरजे मंच के साथ, और सफर बहुत ही सुहाना होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि मेरे साथ सफर में मौजूद है प्रसारण अधिकारी पी डोले तथा तकनीकी अभियंता HM भूषण, आप तक पहुंचाने के लिए ये सुनहरे नगमे, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और किस्से कहानियां। चलिए मेरे साथ सुनते हैं ये आखिरी गीत और आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार।

नमस्कार आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे बिंदुंग बिंदुमांज। दोस्तों, इससे पहले यानी दोपहर के ट्रांसमिशन में आप बने हुए थे आरजे नूरी के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज के दिन का तीसरा और आखिरी ट्रांसमिशन। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक दीपांग चांग एवं तकनीकी अभियंता बी बुरवा। आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या यानी गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के तीसरे प्रसारण में, शाम के इस खास एडिशन में। दोस्तों, दिन की थकान धीरे धीरे कम हो रही है और रात की सुकून भरी हवा अपना रंग जमा रही है। ऐसे में हम ले आए हैं आपके लिए सुकून भरी आवाजें, बेहतरीन संगीत और दिन भर की चुनी हुई खास खबरें सिर्फ आपके लिए। जैसे कि फिल्मों में कहा गया है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बिल्कुल वैसे ही शाम अभी खत्म नहीं हुई है और इस रेडियो सफर में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो बैठे रहिए, रिलैक्स कीजिए और इस शाम को हमारे साथ महसूस कीजिए। आप सुन रहे हैं हमारा तीसरा प्रसारण, ये है आपका दोस्तों गुड इवनिंग ईटानगर का कार्यक्रम। और चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम हमारे गुड इवनिंग ईटानगर के कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको मैं बताना चाहती हूं कि अब से लेकर रात के 10:30 तक के प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अभी यानी शाम के 4:25 से आप सुनेंगे गुड इवनिंग ईटानगर का कार्यक्रम, जिसके बाद 4:45 पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसके बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, जिसके बाद समाचारों का कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा और आप सुनेंगे नुक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम नुक्ते भाषा में समाचार, जिसके बाद 5:05 पर दोस्तों हम लाएंगे आपके लिए खास इवनिंग ड्राइव का कार्यक्रम। 5:30 पर प्रसारित होगा एक बहुत ही खास इंटरव्यू ऑन योगा एंड हेल्थ बेनिफिट्स विद डॉक्टर मुदोंग तात। फिर दोस्तों शाम के 6:00 आप सुनेंगे रेडियो रिपोर्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑफ 12th डे ऑफ राजभवन ईटानगर बाय निदो यांगा, जिसके बाद सुनेंगे कुछ हिंदी फिल्मी गीत। 6:30 पर प्रसारित होगा आदि श्रोताओं का कार्यक्रम आदि भाषा में समाचार। 6:35 पर हम लाएंगे आज के कलाकार का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दोस्तों एक खास कलाकार के बारे में हम बात करेंगे, एक खास उनके कुछ खास गीत सुनेंगे। अगर दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर कलाकार के बारे में सुनना चाहते हैं तो अभी हमें लिख भेजिए हमारे नंबर 9436887808 पर। इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए और हम देखेंगे कि आप कौन से कलाकार को सजेस्ट करते हैं, कौन से आपके फेवरेट आर्टिस्ट है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जिसकी गीत आप सुनना चाहते हैं, उसी का हम प्ले करेंगे दोस्तों। तो जल्दी से तुरंत दोस्तों फोन उठाइए, मैसेज कीजिए। नंबर एक बार फिर आपको बता दूं 9436887808। दोस्तों आज के कलाकार के बाद शाम के 7:00 आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम निशी भाषा में समाचार, जिसके बाद 7:05 पर हम प्रसारित करेंगे विमेन एंड फैमिली प्रोग्राम, एक खास कार्यक्रम, सुनेंगे एक इंटरव्यू श्रीमती बिंदिया एतेनालो के साथ जो कि एक फिल्म मेकर है। 7:35 पर हम लाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों का एक छोटा सा तराना, जिसके बाद ठीक 8:00 आप रूबरू होंगे मिस गैर अते के साथ हमारा खास कार्यक्रम अपना गीत में। 8:30 पर हम सुनेंगे वेस्टर्न मेलोडीज के कार्यक्रम कामसेन तांगजांग के

जिसके बाद ठीक 9 बजे प्रसारित होगा भूले बिसरे गीत का कार्यक्रम, जहां हम सुनाएंगे कुछ ओल्ड मेलोडीज हमारी हिंदी फिल्मों से। 9:30 से 10:30 तक दोस्तों आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रेडियो FM गोल्ड के लिए। दोस्तों ये थी आज के हमारे तीसरे और आखिरी प्रसारण सभा की रूपरेखा। चलिए अब शुरुआत करते हैं गुड इवनिंग ईटानगर का कार्यक्रम। और दोस्तों गुड इवनिंग ईटानगर के कार्यक्रम में आज सबसे पहला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है फिल्म मोहब्बतें से। गीत का नाम है चलते चलते, जिसे गाया है उद्भव मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भाटावेडकर और प्रीता मजुमदार। आशा करते हैं कि आप इस गीत का आनंद लेंगे दोस्तों।

दोस्तों, आज के गुड इवनिंग ईटानगर के कार्यक्रम में मैं आपसे बहुत ही बेसिक सा किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, और वो है पानी। आप पानी यानी H2O से रोज़ मिलते हैं, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, और बीच के हर छोटे बड़े पल में, जैसे बारिश का आना, नदी से गुजरना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ इतनी कॉमन लगती है, वही असल में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो सकती है? सुबह ब्रश करते वक्त जो पानी आप यूज़ करते हैं, चाय बनाते वक्त जो कप में गिरता है, या गर्मी में एक ग्लास पानी पीने पर जो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, ये सब इतना नॉर्मल लगता है कि हम उसकी वैल्यू नोटिस ही नहीं करते। लेकिन सच ये है कि बिना पानी के ना चाय बन सकती है, ना सांस चल सकती है, ना ही लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। सोचिए जरा, पानी एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ आपके अंदर है, बल्कि आपके अराउंड हर जगह है। आपका बॉडी इट्सेल्फ एक वॉकिंग वाटर सिस्टम है। सेल्स, ब्लड, डाइजेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सब कुछ समवेयर ना समवेयर, कहीं ना कहीं पानी पर डिपेंड करते हैं। और फिर भी हम इससे बस एक यूटिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पानी कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी नदी बनकर बह रहा होता है, तो कभी बादलों में उड़ रहा होता है, कभी बारिश बनकर गिर रहा होता है, और कभी बर्फ बनकर रुक जाता है। एक ही चीज, लेकिन कितने सारे रूप। शायद इसीलिए पानी को नेचर का शेप शिफ्टर भी कहा जाता है। अब एक और एंगल सोचिए। जब आप थके हुए होते हैं, या गर्मी से परेशान होते हैं, या कुछ ज्यादा ही सोच रहे होते हैं, एक ग्लास पानी लिटरली आपके मूड को चेंज कर देता है। सिंपल लगता है, बट इम्पैक्ट रियल होता है। कभी कभी एक सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस एक सिप दूर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ हमें इतनी ईजिली मिल रही है, वो हर जगह इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है। कई लोग कहीं पानी के लिए माइल्स ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ग्राउंड वाटर लेवल्स गिर रहे हैं, कहीं रिवर्स स्लोली अपना फ्लो लूज कर रहा है, और हम अक्सर टैप ओपन करके भूल जाते हैं। और एक स्ट्रेंज

आयरनी ये है, हम पानी से ही बने हैं, पानी पर ही डिपेंडेंट है, और फिर भी उसी को वेस्ट करने में इतना कैजुअल हो जाते हैं। अगर थोड़ा रुक कर सोचा जाए तो हर ड्रॉप एक स्टोरी है, क्लाउड से जर्नी, जमीन के थ्रू ट्रैवल, और फिर आपके ग्लास तक का सफर। इतना लॉन्ग जर्नी सिर्फ इसीलिए कि आप एक मोमेंट में उसे इग्नोर कर दे। तो शायद दोस्तों आज का ये सिंपल सा थॉट यही है, पानी को सिर्फ एक रिसोर्स मत समझिए, उसे एक लिविंग कनेक्शन की तरह देखिए जो आपको नेचर, प्लैनेट और लाइफ से जोड़ता है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आप एक ग्लास पानी पिए, बस एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये वो चीज़ है जिसके बिना आप हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों गुड इवनिंग ईटानगर में, थॉट ऑफ द डे आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म रॉक ऑन से। जैसे मैंने आपको पूछा कि क्या आपने सोचा है, तो सुनते हैं रॉक ऑन का सोचा है। मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, जिसके बाद आप सुनेंगे नुक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम नुक्ते भाषा में समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी पूर्ण परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कालीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जल मरुमध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों के लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने टोरंटो कनाडा में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया और टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती साहस और वीरता की प्रतीक थी और उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहेगी। राष्ट्रपति ने आदिवासी समुदायों, वंचित वर्गों और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षक के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। राष्ट्रपति मुर्मू कल कूना राष्ट्रीय उद्यान का दौरा भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने

पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों से योग को नियमित जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बियूराम वाघे के साथ आज ईटानगर के लोक भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी जीरो ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के युवा मामलों के विभाग के सहयोग से आयोजित किया था। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की सदियों पुरानी सभ्यतागत समझ को वैश्विक स्तर पर मिली मान्यता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि योग जो कभी प्राचीन भारतीय परंपराओं का हिस्सा था आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है और इसे संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक मार्ग के रूप में पहचाना जाता है। योग को मानवता के लिए भारत की सबसे बड़ी देन बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि तनाव, चिंता, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और निष्क्रिय आदतों के द्वार से योग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक सरल, किफायती और टिकाऊ तरीका प्रदान करता है। संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने की अपनी निरंतर कोशिशों के तहत राज्यपाल ने कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच अपनी पुस्तक का योग फॉर कॉमन हेल्थ चैलेंजेस की प्रतियां बांटी। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारत के उच्च योग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावर्तन करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया। इन पोतों का उद्देश्य युद्ध अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टोरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की भागीदारी रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीका के राष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमरीका हॉर्मुज जल मरुमध्यक पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मीनाप 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय पात्रता शाह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पूर्ण परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों पर, विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवत तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। ये घटना उस समय घटी जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर में एकत्रित थे। घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और मलबे से 20 से 25 लोगों को निकाला गया। लगभग 15 घायल श्रद्धालुओं का पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

0: पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल दमरुमध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,00,000 मैट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर है देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपनी नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। रूस के साइबेरिया के एक शहर में महीनों से बिना आरोप हिरासत में रखी गई 24 फिलीपींस नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। ये सभी आज मनीला पहुंच गए, जहां उनका स्वागत फिलीपींस के विदेश मंत्री थेरेसा लाजोरो ने किया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। दोनों नेताओं की मुलाकात कजान में आसियान रूस संबंधों की 35वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। विश्व ऊंट दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने संदेश में श्री शेखावत ने कहा कि ऊंट केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका के ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा। दाम्बुला के रंगीगिरी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गवाए 130 रन के पार पहुंच गई। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने टोरंटो कनाडा में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया और टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi today emphasized yoga's role in providing pathway for mental wellness to physical wellness. The Prime Minister said this while leading the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in a common yoga protocol session in this morning, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Highlighting the International Yoga Day theme for this year, Yoga for Healthy Aging, Mr. Modi said that yoga is not just a physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit. President Draupadi Murmu also performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh today. A large number of public representatives, officials and citizens were present at the event. Addressing the event, the president said yoga is a celebration of India's great tradition and it has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life. Vice President C.P. Radhakrishnan also performed yoga at the Spituk Stadium in Leh, Ladakh, all along with hundreds of participants. He emphasized that yoga is a lifelong investment in one's health, well-being and character. International Day of Yoga celebrations were seen across the globe today. More than 2,000 yoga enthusiasts from Indian community and other expatriate groups came together in Doha to celebrate the day, underscoring the growing popularity of the ancient practice in Qatar. The Embassy of India in Muscat also marked the Yoga Day with a special event at its premises, bringing together members of the diplomatic community. The Indian diaspora, friends of India and yoga enthusiasts from across Oman. Bangladesh also marked the Yoga Day with a grand celebration in Dhaka, organized by the Indira Gandhi Cultural Center under the High Commission of India in Bangladesh. Hundreds of yoga enthusiasts gathered to participate in the common yoga protocol

Iñan, nana nya vite, kamote, anganga, hokomba. Diko District Ayush Society Upper Siang District nang min, yoga rang voja ko, multipurpose hall yung kyong nang hokwa. Union Education Minister Dharmendra Pradhan me teja rokni wanyi lak nana he, ni UG exam pe, di kanga me hongjap ka. Ate me anganga exam dite nang, lasak marang diko चंतो एग्जाम दीते हे समतम तम में चदी आंगा में होंगजाप का चंतो लमली सोमाक हे चोसोक ली थिन हे लाखवा खमती आंगा में मीडिया नंग न्यू दिल्ली को होंगजाप का दिको सीबीएसई एग्जामिनेशन रिजल्ट पमिन इहोंग आंगा में अते में थजा मीडिया नंग होंगजाप का इचिवान सत लाख वा इचिवान बंगा पॉइंट वन बंगा लाख हे थियक रिजल्ट ला होंगता दिको नंग गवर्नमेंट पे काम पे पुनरेरे मोट का रंग होंगजाप का मजा इचिवानी पा ट्रस्ट डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर रंगवो को जन कल्याण शिविर है तोंगतोंगा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश नंग होनवा जन कल्याण शिविर पर बोलेंग सियांग डिस्ट्रिक्ट सिप्पी अपर सुबनसिरी याजाली के पन्योर हाली विलेज जीरो सर्कल व लोअर सुबनसिरी नंग होनवा और रंगवो को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखो चो सकते हैं मिन रजिस्ट्रेशन रंग अवेयरनेस कैंपेन देखो चंचन लमली चो सकते हैं लमचो सुई का क्रिकेट खेल लोम को थेजा एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई नंग इंडिया में नीत है इंटरनेशनल सीरीज को डिड्रॉम मैच को अफगानिस्तान नंग फाइनल खेल लोम को जीएन का यशस्वी जैसलवार में संथुन लोनवा थजा नोक नोक ते खोपोट पे अकुजला थोन मंगता अरो नंग नोक ते रोन यान से चोतात मंगन।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का कार्यक्रम आदि भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल की दिल तक। दोस्तों, वक्त हो चला है आज के कलाकार का कार्यक्रम के लिए, और आज के इस खास एपिसोड में आज की शाम हम डेडिकेट कर रहे हैं एक ऐसे सिंगर को जिनकी आवाज में एक अजीब सी सुकून भरी इंटेंसिटी है, सॉफ्ट भी, सोलफुल भी, और कभी कभी स्पिरिचुअली एलिवेटेड भी। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट जावेद अली। इनकी वॉइस ऐसी है जो लाउड नहीं होती, लेकिन सीधा दिल तक पहुंचती है। और आज हम उनके कुछ आइकॉनिक गाने लेकर आए हैं जो अलग अलग मूड्स और एरास को डिफाइन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जोधा अकबर से जश्न बहारा। ये गाना सिर्फ रोमांटिक नहीं, ये एक पोएटिक सेलिब्रेशन है। जोधा अकबर के इस ट्रैक में जावेद अली की वॉइस एक रॉयल सॉफ्टनेस लाती है, जहां लव एक डिवाइन फीलिंग लगता है, जैसे मोहब्बत खुद एक सेलिब्रेशन हो। चलिए सुनते हैं जश्न बहारा।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों फिर आता है तुम मिले, ये गाना मॉडर्न रोमांस का इमोशनल स्नैपशॉट है। बार्स, रेन, मेमोरीज, सब कुछ इस ट्रैक में एक नॉस्टैल्जिक फ्लो बन जाता है। जावेद अली की आवाज यहाँ लॉन्गिंग और होप दोनों को बैलेंस करती है, जैसे दिल कह रहा हो कि मिलना जरूरी था चाहे देर से ही सही। तो चलिए सुनते हैं तुम मिले।

और फिर हम आते हैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल स्पेस में. कुन फाया कुन रॉकस्टार का ये ट्रैक सिर्फ सॉन्ग नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है. यहाँ जावेद अली की वॉइस एक सरेंडर बन जाती है. ईगो, डिजायर और नॉइस सब डिसॉल्व हो जाता है. ये वो मोमेंट है जहाँ म्यूजिक प्रेयर बन जाता है, इबादत बन जाता है. तो चलिए सुनते हैं रॉकस्टार का कुन फाया कुन जावेद अली की आवाज में.

दोस्तों, और फिर हम आते हैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल स्पेस में। आज के मॉडर्न साउंडस्केप में हम उनको सुनते हैं श्री वल्ली के थ्रू भी। पुष्पा द राइज का ये सॉन्ग सिंप्लिसिटी और ऑब्सेशन का एक इंटरेस्टिंग मिक्स है। यहाँ वॉइस स्मूथ है, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टेटेड है, लेकिन इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे एक क्वाइट इमोशन जो स्लोली अपनी जगह बना लेता है। सुनते हैं दोस्तों फिल्म पुष्पा से श्री वल्ली। अगर हम जावेद अली की करियर को एक लाइन में समझे तो वो लाइन होगी, लेस अबाउट परफॉर्मेंस, मोर अबाउट इमोशन। उनकी सिंगिंग में ओवर एक्सप्रेशन नहीं होता, बल्कि एक नेचुरल फ्लो होता है जो हर लिसनर को अपनी पर्सनल स्टोरी जैसा लगता है। दोस्तों, आज की शाम जब आप इन गानों को सुन रहे हो तो सिर्फ मेलोडी मत सुनिए, हर नोट को फील कीजिए, क्योंकि जावेद अली की आवाज सुनना बेसिकली एक इमोशनल जर्नी पर जाना है। कभी रॉयल रोमांस, कभी मॉडर्न लॉन्गिंग, तो कभी स्पिरिचुअल सरेंडर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आज के कलाकार का हमारा ये खास सेगमेंट। तो चलिए दोस्तों, इस सेगमेंट का अंत करते हैं फिल्म पुष्पा से जावेद अली की आवाज में श्री वली। मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम निशी भाषा में समाचार, तो बने रहिए हमारे साथ।

0: देखी क्या मेरे को?
1: अरे नहीं देखा।
0: अरे बोल ना, मेरे को देखी कि नहीं?
1: हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा।
0: तू किस खुशी में खुश हो रहा?
1: मैं क्यों खुश होऊंगा?
0: क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं।
1: मैं ऐसा क्यों करेगा?
0: मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाऊ, इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है।
1: भाऊ मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा।
0: चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को दो पल की खुशी तो मिलती ना।
1: आइडिया तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था।
0: दिमाग में

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम निशी भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, आज विमेन एंड फैमिली प्रोग्राम के इस कार्यक्रम में हम लाए हैं एक खास इंटरव्यू मिस तुमी रिबा के साथ ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। आशा करते हैं कि आप इस इंटरव्यू से कुछ सीखेंगे। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अत। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का महिला जगत कार्यक्रम में। श्रोता, आज के इस अंक में हमारे साथ स्टूडियो में है विमेन एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी मिसालों में से एक तुमी रिबा, ओनर एंड फाउंडर ऑफ ओबिनियम्स कैफे एंड बेकरी अरुणाचल प्रदेश। तो तुमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
1: तो जैसे कि आप जानती है कि ये जो कार्यक्रम है ये महिलाओं के लिए है, खास करके जो हमारी महिला सहेलियां है, जो यूथ है, उन लोगों पर आधारित है। तो इस कार्यक्रम में जाहिर सी बात है, हम ओबिनियम्स के जो स्पेशलिटी है, उसके बाद जो फ्लेवर्स एंड रेसिपीज के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जो जर्नी है एक बेकर के तौर पे, उसको अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी बहुत ज्यादा महिलाओं के और यूथ के इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो हम चाहेंगे आपकी जो कहानी है उसको हमारे श्रोताओं के साथ, जो जर्नी है उसको शेयर करें और उन्हें और इंस्पायर करें।
2: तो मेरा जो जर्नी है ये स्टार्ट हुआ अराउंड 2017 के आसपास
1: जी।
2: तो एक्चुअली मैंने प्रॉपर कुछ कोर्स नहीं किया ये डिग्री के फील्ड में। मैंने एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन डिजाइनिंग भी किया है
1: जी।
2: तो फैशन डिजाइनिंग किया था, बट देन लाइक बहुत कुछ हुआ एंड देन

0: धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग थोड़ा थोड़ा ज्यादा ऑर्डर्स,
1: अच्छा
0: तो मुझे लगा कि मे बी दिस कैन बी अ करियर, मे
1: हाँ
0: बी. तब स्ट्राइक हुआ कि मे बी हाँ ये कर सकते, बट इतना श्योर नहीं था कि हाँ ये करना ही है. दिमाग में ऐसे था कि मे बी हाँ इसको एक ट्राई दे सकते हैं. ऊपर से इंटरेस्ट था, हॉबी था,
1: हाँ
0: पैशन था, तो खाने का शौक भी था.
1: हाँ
0: तो वो ऑर्डर्स लेते गया. एंड देन उसके बाद एक दो साल, लाइक वन एक डेढ़ साल में भी ना, तो होम बेस्ड ही था. हम लोग
1: हाँ
0: बस केक्स का ऑर्डर लेते थे, बर्थडे
1: अच्छा
0: केक्स. तो तब समय क्या था कि कैफे कल्चर इतना नहीं था यहाँ पे,
1: हाँ
0: जैसे अब भी है वैसा नहीं था. तो उतना ध्यान में भी नहीं आया कि हाँ मे बी कैफे भी कर सकते हैं. तो वो जर्नी जो था एक डेढ़ साल का, उसके बाद जब एक पॉइंट आया कि हाँ यही करना है, जब आपको पता चलता है कि हाँ यही करना है, तो मतलब आइडियाज और आने लगा कि क्या करना चाहिए और क्या कर
1: हाँ
0: सकते हैं मे बी इसके आसपास, केक्स के आसपास. तो सोचा कि चलो एक कैफे करते हैं. बट देन उसके लिए फिर क्या हो गया कि यू नीड, लाइक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए फिर, तो वो एक इश्यू आ जाता है. अभी आपका ये जो है स्टार्टअप्स में यूजुअली क्या होता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, या आपके पास लाइक वो अमाउंट नहीं है टू
1: हाँ
0: स्टार्टअप, तो वो एक थोड़ा मुश्किल आता है. तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ फिर,
1: अच्छा
0: बट समहाउ आई मैनेज.
1: हाँ
0: एंड देन इनमें इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत थोड़ा सा हेल्प रहा. लाइक
1: अच्छा
0: डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में एक स्कीम था, चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना, तो
1: अच्छा
0: उसमें अप्लाई किया, तो उसमें एक ग्रांट मिला, तो विच हेल्प अ लॉट टू
1: अच्छा
0: स्टार्ट माई फर्स्ट स्टोर. तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म
1: हाँ
0: में
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: अभी भी चालू है मेरे ख्याल से ये योजना. तो
1: अच्छा
0: इफ कोई नया एंटरप्रेन्योर जो जिन जिनका आइडिया बहुत अच्छा है एंड देन फुल प्रूफ है एंड देन दे आर विलिंग टू वर्क, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आपको बहुत मेहनत करना
1: हाँ
0: पड़ता
1: वो
0: है.
1: तो है
0: इट्स लाइक इजी नहीं है,
1: हाँ
0: जैसे
1: हाँ
0: लोग सोचते हैं कि ये तो बस केक बना रहे या
1: हाँ
0: तो ये जस्ट गारमेंट बना रहे, मतलब इजी नहीं है. बहुत सारा चीजें चलता है जो कि आपको ओवरलुक करना पड़ेगा, देन
1: हाँ
0: बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि इसको कैसे आगे लेके जाए, एंड देन
1: हाँ
0: विजन होना पड़ेगा उसके लिए आपको,
1: वही
0: तो वो जरूरी है.
1: जी. आपने अभी खुद बताया कि आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया
0: जी
1: हुआ है,
0: हाँ
1: और जहां तक हमने आपके बारे में सुना है, आप उसमें गारमेंट बिजनेस में
0: जी
1: भी थे.
0: जी
1: तो क्या अभी दोनों साथ साथ चल रही है, या आप बेकरी है उसी पे है, ओवेनियम्स पे ही
0: नहीं
1: है?
0: अभी तो 100% बेकिंग में है
1: अच्छा,
0: अभी.
1: आपने जो आपका गारमेंट्स का जो
0: हाँ
1: बिजनेस है
0: हाँ
1: उसको ड्रॉप कर
0: ड्रॉप
1: दिया,
0: मतलब ऑन
1: आई
0: होल्ड
1: मीन
0: रखा,
1: हाँ
0: बट देन मे बी अगर फ्यूचर में लाइक टाइम, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि आपको बहुत टाइम देना होता है, तो वो आप दो तीन एक साथ, हाँ कोई लोग होते हैं जो कर पाते हैं, बट मैंने सोचा कि एक को जो अभी स्टार्ट किया है
1: हाँ
0: उसको अच्छे से टाइम दे के थोड़ा आगे लेके जाते हैं, उसके बाद मे
1: हाँ
0: बी अगर कुछ और होता है तो
1: हाँ इसमें
0: देखना.
1: आपका ये एक आपका हॉबी भी रहा है
0: हाँ
1: तो. और लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं है कि आपको इसमें सही नहीं लगा, ऐसे तो कुछ नहीं है. जो लोग फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं या
0: हाँ
1: फिर उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, उसमें कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते.
0: हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वो करियर ठीक नहीं है, ऐसा नहीं. इट वॉज जस्ट कि एक हॉबी शिफ्ट हो गया, एक पैशन शिफ्ट हो गया, एक सर्टन पॉइंट में वो मेरा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. तो इज लाइक कि इसमें मेरा ज्यादा मन है, तो उसके मुताबिक मैंने अपना थोड़ा सा जो करियर पाथ है उसको चेंज किया.
1: हाँ, जब इंटरेस्ट आपका होता
0: हाँ
1: है, जब आप मतलब पैशन के साथ करता है,
0: जी
1: तो वो
0: हाँ
1: थोड़ा आसान लगता
0: वही
1: है
0: हाँ
1: और मतलब इजी हो जाता
0: जी
1: है. तो जैसे जो बिजनेस है आपका, या फिर कहे कि ओवन यम्स का जो सक्सेस है, उसको हम उसके आउटलेट से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया 2017 में आपने होम बेस्ड शुरू
0: जी
1: किया
0: जी
1: था, तो अभी तो 23 है.
0: ट्वेंटी थ्री
1: बहुत
0: हाँ
1: कम समय में, क्योंकि बीच में कोविड भी रहा,
0: कोविड भी
1: तो
0: रहा है
1: उसमें
0: जी.
1: भी काफी परेशानियां होगी. कोविड में तो बहुत सारी चीजों का बेचना वो तो मुमकिन नहीं
0: जी
1: था.
0: जी
1: तो इतने कम समय में देखा जाए तो आपका तो कुछ साल का ही बिजनेस रहा है, अगर हम कोविड को अगर बीच में से
0: हाँ
1: अगर हटा
0: हाँ
1: दे तो,
0: हाँ
1: कोविड वाला सीजन को. ऐसे में आपका 3 आउटलेट्स होना मतलब बहुत बड़ी सफलता है. तो और इसके
0: थैंक
1: बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में
0: यू.
1: आपको ओवेनियम्स को ग्रांट भी मिला है,
0: जी.
1: तो

0: तो ये
1: जी
0: एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सक्सेस है विनियम्स के लिए, तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए।
1: थैंक
0: तो
1: यू
0: इसमें मैं
1: सो
0: ये जानना चाहूंगी कि क्या ओविनियम्स की 3 आउटलेट्स है,
1: मच।
0: उसमें कितने लोगों को आप एम्प्लॉय कर पाते हैं, कितने लोग वहां पे काम करते हैं?
1: ओके, अभी अगर मेरा 3 आउटलेट्स हैं हमारा अब, एंड देन हमारा एक सेंट्रल किचन है,
0: अच्छा,
1: तो उसको सबको मिला के इन अराउंड 16 to 17 लोग हैं
0: अच्छा, तो
1: ओवेनियम्स के
0: वो लोग भी
1: अंदर।
0: एक ट्रेन बेकर है?
1: नहीं, यहाँ पे क्या है कि ट्रेन्ड बेकर मिलना थोड़ा मुश्किल है,
0: अच्छा,
1: आपको बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं जो कि ऑलरेडी जिनने काम किया हुआ है, तो वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए।
0: हाँ,
1: तो मैंने क्या किया कि बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट लोग बुलाए, एम्प्लॉयज हायर किए, देन रेसिपी दे दिया, बनाओ कर दिया, ऐसा
0: हाँ,
1: नहीं है। तो
0: अच्छा,
1: आई यूज टू बेक ऑल्सो, इवन आई बेक अभी भी। तो मैंने क्या किया कि आई लाइक यहाँ पे 2-3 लोग हायर किए यहाँ लोकली,
0: हाँ,
1: मोस्टली वेमेन, लाइक आप बोल सकते हैं कि 90% वेमेन एम्प्लॉई
0: विमेन।
1: है। हाँ, तो 2-3 मैंने लोग हायर किए, उनको ट्रेनिंग दिया पहले
0: अच्छा,
1: कि ये रेसिपी से ये बनाने हैं। उसके बाद हमने लाइक मैंने जो क्यूरेट किया, मे बी मेरे टेस्ट के हिसाब से जो चीजें हैं मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है, ये लाइक मार्केट में पसंद किया जा सकता है, तो उस हिसाब से हमने मेन्यू रेडी किया, एंड देन स्टाफ को ट्रेन किया, खुद ही किया मैंने सब कुछ।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद लाइक वो चेन बनाना पड़ता है फिर ना, तो एक 4 स्टाफ है, मे बी उसके नीचे और 2 लगा दो, फिर उनको सीखने दो, ऐसे करके धीरे धीरे वो स्टाफ ये बनने लगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रोफेशनल्स है, ट्रेन प्रोफेशनल्स ज्यादा नहीं मिलते,
0: हाँ, अपने
1: क्योंकि
0: अरुणाचल
1: हाँ
0: में।
1: अरुणाचल में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सबको सरकारी नौकरी
0: हाँ, वही
1: चाहिए,
0: वही।
1: तो स्किल ट्रेनिंग बहुत कम है लोगों के पास, जो स्किल एक्चुअल स्किल ट्रेनिंग है ना। यहाँ पे क्या होता है कि लोग पढ़ने में लगे रहते हैं, विच इज नॉट बैड, जो गलत नहीं है,
0: हाँ,
1: और सबका अपना अपना एक
0: एम होता
1: एम
0: है।
1: होता है, करियर को लेके अपना चॉइसेस अलग
0: हाँ,
1: अलग होता
0: चॉइसेस
1: है। बट
0: अलग।
1: देन कोई कोई अगर इसीलिए एक जिनको इंटरेस्ट है कुछ फील्ड में, नॉट जस्ट बेकरी या
0: हाँ,
1: कोई अदर फील्ड जो भी हो, एक स्किल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास वो स्किल है तो बिना सर्टिफिकेट के भी आपका स्किल को देख के आपको कोई हायर कर लेगा
0: हाँ,
1: उसमें।
0: तो उसमें भी आप कमाई है वो कर
1: हाँ, वो
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं, वो
0: तो
1: स्किल ट्रेनिंग होना जरूरी है
0: हाँ,
1: पर।
0: ये जो ट्रेनिंग है वो बैकिंग का, क्या ओवेनियम्स देते हैं लोगों को? अच्छा,
1: अभी फिलहाल तो नहीं है, हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ये भी ऐसा है कि मेरा जो मन है, अगर इफ आई स्टार्ट लाइक ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग देना चालू करूं अगर, तो प्रॉपर एक प्लेस होना है, इक्विपमेंट्स होना है,
0: हाँ,
1: क्योंकि आप ऐसे थोड़ा सा सिखा दो एंड छोड़ दो वो भी नहीं होता ना।
0: हाँ,
1: तो अच्छे से एटलीस्ट एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल होना पड़ेगा, तो वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था, एंड देन टाइम
0: अच्छा,
1: मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, तो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया।
0: ओके,
1: बट देन इन फ्यूचर हम
0: हाँ,
1: लोग प्लान तो कर रहे
0: उसके
1: हैं,
0: लिए किचन भी थोड़ा अलग,
1: किचन
0: आप जहाँ
1: हाँ
0: बैक करते हैं उस पर तो शायद
1: उसमें नहीं
0: नहीं
1: हो
0: हो
1: सकता
0: पाए।
1: है। हाँ, तो
0: अच्छा,
1: अलग से एक स्पेस होना पड़ेगा, एंड देन प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ आपको ट्रेनिंग के लिए, क्लासेस के लिए चाहिए होगा, तो और प्लस टाइम भी बहुत देना पड़ेगा
0: हाँ,
1: उसमें।
0: वही वही। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जैसे मैं अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि जिस अभी आपने सुना कि तुम्ही जी जो है कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, खुद
1: जी
0: से
1: जी
0: अपने पसंद और हॉबी को फॉलो करते हुए उन्होंने इतना सीखा है और इतना किया है कि वो अभी बाकी लोगों को भी रख सकते हैं, काम
1: जी
0: दिला सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक अभी के जमाने में एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया है, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है। और जैसे अभी आपने बोला कि हर कोई अभी सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, हर किसी को तो इस जमाने में न सरकारी नौकरी मिलने से रहा,
1: हाँ, वो तो पॉसिबल
0: और
1: नहीं
0: नहीं मिलने के कारण फ्रस्ट्रेट होके अपना लाइफ, मतलब अपना जो टाइम बर्बाद करना, वो भी तो किसी भी तरह
1: हाँ
0: से सही नहीं है। तो जैसे जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और हो सकता है कोई चाहते भी है लेकिन जैसे शुरू करने के लिए जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आइडियाज होने से भी कुछ लोगों का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, ऐसे भी होंगे, या छोटा बड़ा कोई भी स्टार्टअप जो करना चाहता है उनको एंटरप्रेन्योरशिप का जो कुछ आइडियाज है वो आपके हिसाब से आप कुछ हमारे श्रोताओं को शेयर कर दे तो बेहतर होगा।
1: अभी तो स्टार्टअप के लिए आई थिंक स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। एंड देन आजकल बहुत सारे ग्रांट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने टूरिज्म का बताया अभी आपको। उसके बाद अभी यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क भी है। ये है आपका इधर किंगअप स्कूल के आसपास में है,
0: अच्छा, नीति विहार।
1: नीति विहार। हाँ, तो इनका भी एक प्रोग्राम चलता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसमें भी इन लोग ग्रांट देते हैं। एट द सेम टाइम इन लोग आपको मेंटोरशिप भी देते हैं। तो
0: अच्छा।
1: बहुत सारी चीजें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे आजकल के जमाने में, क्योंकि पहले इतना ये सब
0: हाँ
1: नहीं था।
0: हाँ
1: आजकल सरकार भी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं सरकार, तो उसमें क्या है कि कुछ ग्रांट्स वगैरह काफी सारा अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। एंड देन उसके लिए आपको अपना जो आइडिया है, आइडिया आपका बहुत सही होना पड़ेगा कि आपको वो ग्रांट मिले। तो आइडिएशन मेरे ख्याल से उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड देन आपका स्किल, कि ऐसा नहीं हो कि जस्ट आइडिया है बट वो बनेगा कैसे, वो आपको देखना पड़ेगा वो चीज़। तो उसमें आपको बहुत सारा चीजें, स्किल बेस्ड होगा, टेक बेस्ड होगा, तो उसमें कैसे आप आइडिया को फॉरवर्ड लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक आइडिया है यहीं पे सब मतलब सीमित है, आगे उसको कैसे लेके जाना है वो सोचना पड़ेगा। उसके बाद उस हिसाब से आप, अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, तो आपको ग्रांट्स भी अवेलेबल है आजकल काफी सारा,
0: थोड़ा अवेयरनेस भी होना
1: अवेयरनेस,
0: पड़ेगा,
1: हाँ,
0: खुद
1: होना
0: थोड़ा
1: पड़ेगा।
0: रिसर्च यहाँ वहाँ पता करना
1: हाँ
0: पड़ेगा।
1: जी,
0: हाँ, और जहाँ तक हम जैसे लोग समझते हैं जो स्किल से, उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी जो डेडिकेशन और जो मेहनत है वो भी मतलब बहुत जरूरी
1: बहुत
0: होंगे
1: ज्यादा, वो तो बहुत
0: क्योंकि जो
1: ज्यादा
0: सरकारी नौकरी करते हैं वो अगर 5 दिन 10 दिन भी ऑफिस नहीं जाए तो भी उनको सैलरी तो उतना ही अमाउंट आना
1: हाँ,
0: ही है। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आप लोग जो काम करते हैं उसमें तो जहाँ पे मेहनत गई वहाँ पैसे भी गए,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद क्वालिटी गए वहाँ भी आपके मतलब, और करियर भी विद इन कुछ समय में ही खत्म
1: हाँ
0: होने का भी
1: हाँ
0: चांसेस रहता
1: वो
0: है।
1: बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपको मतलब परसिस्टेंट होना पड़ेगा।
0: हाँ
1: एंड देन इसमें क्या है कि मैंने जितना देखा है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप इंटरेस्टेड है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। लाइक इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया था, सुबह 4 बजे तक आई यूज टू बेक अकेले, रात को सुबह 4 बजे तक, क्योंकि मेरा प्रोफेशनली आई एम नॉट ट्रेन्ड, आई वॉज नॉट ट्रेन्ड, तो बहुत सारा चीजें पता नहीं था कि कैसे होना है। तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, बहुत सारे चीजें आ जाते हैं, तो आपको बहुत सारा चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मे बी योर
0: नहीं, वो तो
1: स्लीप
0: होगा ही।
1: तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा फिर आपको। जो जो लोग सोचते हैं कि इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको।
0: जैसे कि आपका जो कंसिस्टेंसी जिसको
1: जी
0: बोलते हैं,
1: जी
0: या फिर
1: हाँ
0: सस्टेनेबिलिटी
1: हाँ
0: जो है। तो इस बीच अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz, जिस पर कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस तुमी रिबा, ऑनर एंड फाउंडर ऑफ ओबेन यम्स कैफे एंड बेकरी ईटानगर, और हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमी जी, अगर हम ओबेन यम्स की बात करें, उसकी जर्नी की बात करें, उसकी सफलता की बात करें, तो ओबेन यम्स को आप कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ने के लिए आप मेंटेन रखते हैं, क्या स्पेशलिटी है ओबेन यम्स की?
1: तो हमारा बेसिक जो बिजनेस का आइडिया है, हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग का जो बेक्ड गुडीज है जो हम बेक करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इट्स फ्रेश, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं इसके लिए। लाइक 1-2 दिन आप चालू करोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ दिन में इतना क्वांटिटी बनना सही है, तो हम लोग उस हिसाब से कम बनाते हैं, कि एवरी डे हम लोग फ्रेश चीजें बनाएं, क्योंकि क्या यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, आप ट्राई करोगे तो थोड़ा पुराना मिलने से आपको भी अच्छा नहीं लगता ना, और हमको भी सर्व करना वो पसंद नहीं है। तो हम लोग क्या ट्राई करते कि हम हमारा जो बेक्ड गुडीज है वो फ्रेश रहे और स्वीटनेस को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ के लोग इतना ज्यादा स्वीट नहीं खाते, तो

0: थोड़ा सा बैलेंस करते हैं,
1: अच्छा
0: तो हम ज्यादा ध्यान उसी पे रहता है हमारा।
1: और अगर हम क्वालिटी डेडिकेशन की बात करें तो दोनों ही बराबर है या मतलब कैसे, जिस किस पर ज्यादा हमें काम करना चाहिए?
0: मेरे ख्याल से तो बराबर है
1: बराबर।
0: ये।
1: और जो लोग, जो लड़कियां हैं, जो जिसका ग्रेजुएशन हो गया, जिन्होंने अपना जो भी कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया, अभी जॉब के लिए यहाँ ईटानगर बैठे हैं, या फिर जो अपने गांव में भी बैठे हो, और या फिर इवन जो होम मेकर्स है, जो घर पर है, उन लोग भी अगर मतलब ये बेकिंग दुनिया में, मतलब इसमें अगर अपना कुछ थोड़ा बहुत करना चाहे, जैसे आपने भी घर से ही शुरू किया,
0: जी
1: तो घर बैठे ही थोड़ा सा कम खर्चा में थोड़ा बहुत करना चाहे तो कैसे शुरू कर सकते हैं? क्या इसमें बेकिंग में भी ऐसे कुछ है कि आप घर बैठे बैठे थोड़ा सा पैसा कमाना चाहे तो क्या वो भी कर सकते हैं?
0: हाँ, कर सकते हैं डेफिनेटली। ये आप एक पार्ट टाइम हॉबी की टाइप भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट हल्का सा करना पड़ेगा, क्योंकि बेकिंग ऐसा है कि आप थोड़ा सा अभी बेक कर लिया, थोड़ा बाद में बेक कर लिया, वो नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, बट होम बेस्ड कर सकते हैं, दैट्स इजी। थोड़ा सा वही टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है, वो
1: मतलब
0: अगर
1: ये
0: आप
1: बहुत समय
0: संभाले,
1: लेता है,
0: समय लेते हैं,
1: समय लेता
0: जैसे
1: है।
0: लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी बन जाता है, ऐसा नहीं होता। एंटायर प्रोसेस है ये एक ना, एंड देन टाइम काफी लेता है।
1: और अगर उसको आप एक बिजनेस पर्पस के लिए बेचने के लिए बना रहा है तो परफेक्शन भी
0: जी
1: जरूरी है
0: जी
1: ना।
0: हाँ
1: वो भी सही बात है। तो जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश में बहुत ऐसे अलग अलग जो चीजें हैं उसमें, चूंकि ये महिला जगत कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए है, तो जो अनकन्वेंशनल जॉब है उस पे बहुत सारे लड़कों को हम देख सकते हैं। और अभी तक का जो हमने जो देखा है, इवन सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन, मतलब महिला उसमें बहुत कम है। तो
0: जी
1: क्या कहना चाहेंगे आप?
0: कम तो है, बट देन अभी लोग, बहुत सारे लड़कियां आ रहे हैं, लाइक फीमेल एंटरप्रेन्योर्स अप एंड राइजिंग है, एंड इसमें मेरे ख्याल से फैमिली का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। बिकॉज मेरा भी अगर मैं जर्नी देखूं, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता, नॉट फाइनेंशियली बट आपका
1: मॉरली भी।
0: मॉरली हो गया, एंड देन टाइम भी देखा जाए तो मेरा इतना, मैं क्यों इतना टाइम दे पा रही हूँ, बिकॉज फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी चीजों
1: बाकी
0: में
1: चीजों को
0: लाइक
1: वो मैनेज
0: हाँ
1: कर
0: वो
1: रहे हैं।
0: मैनेज कर दे रहे हैं, सो दैट मैं उधर पहुंच पाऊँ एंड देन टाइम, उतना टाइम दे पाऊँ। तो मेरे ख्याल से फैमिली सपोर्ट एक रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिगार्डलेस, आप अगर आपका पैशन है, एंड देन इफ यूर आपको उस तरफ काम करने का, एफर्ट देने का, अगर आपको आप कर सक रहे हैं, तो आप आगे जा सकते हैं। इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में इट्स ऑल अबाउट आइडिया, देन आपका कंसिस्टेंसी है, देन आपका एफर्ट्स, वो बहुत मैटर करता है ये सब चीजें।
1: आजकल तो वैसे भी कुछ महिला या पुरुष ऐसे कुछ तो धीरे धीरे ये गैप भी कम होते जा रहा
0: हाँ,
1: है,
0: कम
1: तो
0: हो रहा है, बट इट हो रहा है,
1: हाँ
0: धीरे
1: हो
0: धीरे हो रहा
1: हाँ
0: है।
1: अच्छी बात है। तो अगर वैसे अभी हमारे समय होने को है, तो
0: ओके
1: जाने से पहले
0: जी
1: जो जितने ओवे नियम्स का, जो जैसे हमने पहले भी बोला कि ओवे नियम्स का 3 आउटलेट्स है, हम जानते हैं नाहरलगन में है,
0: जी
1: ईटानगर, फिर भी लोकेशन आप हमारे श्रोताओं को बता दे, जो अपने जो आपके स्टोर में जाके, जो कैफे में जाके लेना चाहे तो।
0: ओके हमारा पहला स्टोर जो स्टार्ट हुआ था वो 0 पॉइंट में है, KFC के सामने
1: अच्छा
0: एक वो है। देन हमने गंगा में स्टार्ट किया है, जो कि आकाशदीप का ऑपोजिट में है, एंड देन उसके बाद अभी दिस ईयर तो हमने एक नाहरलगन पे स्टार्ट किया है, ई सेक्टर, नाहरलगन
1: ई
0: ई सेक्टर।
1: सेक्टर
0: जी
1: ना, और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं।
0: ऑनलाइन अभी तक स्टार्ट, बीच में हम कर रहे थे थ्रू हंगरी जी, बट
1: अच्छा
0: अभी कुछ समय के लिए हमने बंद किया है, क्योंकि थोड़ा मैनेजमेंट में, जैसे कि 3 स्टोर है, तो अभी उससे कैसे मैनेज करना पड़ेगा वो थोड़ा देखना पड़ रहा था, तो हमने अभी के लिए थोड़ा सा बंद किया है। बट देन आप यू टेलर्स वगैरह के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, जो
1: अच्छा
0: पिकअप डिलीवरी कर देते हैं, एंड सेल्फ पिकअप तो है ही।
1: हाँ, ठीक है। तो हम तो उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता लोकेशन सुन लिए होंगे, तो
0: जी
1: जो ओवे नियम्स विजिट करना चाहते हैं वो जरूर जाए और चख के देखे
0: जी
1: स्वाद।
0: श्योर।
1: तो जैसे मैंने पहले बोला कि इतने कम समय में इतने 3 आउटलेट्स, वो भी कोविड टाइम को स्किप अगर हम करें
0: हाँ
1: तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। इसलिए अपने श्रोताओं को भी मैं जरूर यही बोलना चाहूंगी कि एक बार जरूर टेस्ट करके
0: या
1: देखें।
0: जी
1: तो अभी जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें अपनी तरफ से आप

0: क्या कहना चाहेंगी, जो खास करके जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है उन लोगों को?
1: मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे स्कोप काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे करने के लिए. लेकिन यहाँ पे अरुणाचल में मैंने क्या देखा है, एक ऐसा होता है कि कोई बेकिंग कर रहा है तो सब लग जाते हैं बेकिंग
0: हाँ
1: करने,
0: हाँ हाँ
1: कोई मैक्रम का काम कर रहा है तो सब वही लग जाते करने. तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें करने को, एंड देन अगर आप थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करें, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा आजकल नेट नेट सबके पास रहता है, थोड़ा सर्च करें, बहुत सारी चीजें करने के लिए. जैसे कि अभी एक मैक्रम वर्क भी काफी चल रहा
0: हाँ
1: है, एंड देन बहुत सारी महिलाएं उसमें काम कर रही है, वो एक हो गया. बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो अगर आप थोड़ा सर्च करें, रिसर्च अपना करें, अपना इंटरेस्ट, वो सबसे
0: हाँ
1: इम्पोर्टेंट है. इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि आप फूड बिजनेस में हैं बट आपको खाने का कोई शौक नहीं है, तो
0: हाँ
1: आपको पता नहीं रहेगा कि क्या गलत जा रहा है, क्या
0: हाँ
1: सही जा रहा है. तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है.
0: बनाने
1: तो
0: के साथ साथ खाने का भी
1: हाँ,
0: इंटरेस्ट होना
1: तो
0: पड़ेगा।
1: आपको वो टेस्ट का पता होना पड़ेगा.
0: हाँ
1: जैसे कि आप अगर मैक्रम का कर रहे हो, तो आपको वो दिखना कैसा चाहिए, कैसे मतलब अपील करे कस्टमर्स को, वो सब चीजें देखना जरूरी होता है. तो मेरे ख्याल से एक इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. तो क्या होता है ना, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है बट लोग सोचते कि हाँ ये बिजनेस अभी चल रहा है या बूम कर रहा है, तो आप कूद जाते हो उसमें, तो
0: हाँ
1: वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से. आपको देखना है कि आपका पैशन है कि नहीं, आप उस हिसाब का काम कर पाओगे कि नहीं, वो एक देखना जरूरी है. तो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको कई बार लोग भूल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. कि धीरे धीरे, क्योंकि आप ऑब्वियसली 1-2 साल के लिए नहीं कर रहे हो ये चीज, आपका एक करियर पाथ है ये, तो बहुत साल सालों सालों तक करना पड़ेगा. तो अगर
0: हाँ
1: आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो ऑब्वियसली आप अपना 100% नहीं दोगे उसमें, तो दैट्स वेयर फेलियर होता है मेरे हिसाब से.
0: इंटरेस्ट होना
1: जी,
0: पड़ेगा।
1: इंटरेस्ट तो होना पड़ेगा आपका, एंड मेहनत करने के लिए रेडी
0: वो ये बिना मेहनत का तो कुछ हो नहीं सकता
1: रहना.
0: ना। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो जो आपकी बातें हैं उनसे भी उनको बहुत प्रेरणा मिली होगी। और अपने श्रोताओं को मैं तो फिर से बताऊंगी कि तुमी रिबा जो है, कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ऐसे ही अपना पैशन फॉलो करके आज हम कह सकते हैं कि एक बहुत सक्सेसफुल बेकर बन गए हैं। तो आप भी उनसे प्रेरित होइए और अपना कुछ नया करने की कोशिश
1: जी
0: कीजिए।
1: जी
0: जैसे इन्होंने बताया कि एक करते हैं तो सब लोग कूद जाते हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, तो आपको और मतलब दुगनी मेहनत करनी होती है
1: जी
0: उसमें। ले और कुछ जब नया करता है तब ज्यादा लोग भी नई चीजों पर ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, और आप अगर मैदान में अकेला है तो बाकी ऑप्शन भी लोगों के लिए
1: जी
0: नहीं रहते। तो कुछ कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट का सही उपयोग कीजिए। तो इसी के साथ हम तुम्हें रुबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें वक्त दिया और हमारे जो महिला मित्र है खास करके, उनको अपनी जर्नी के जर्नी शेयर किया और जो भी आइडियाज है वो शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए.
0: तो श्रोता, हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विमेन एंड फैमिली प्रोग्राम, एक खास इंटरव्यू विद टूमी रिबा ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों चलिए अब वक्त हो चला है हिंदी फिल्मी गीतों का के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में दोस्तों आज जो पहला गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है फिल्म अंधाधुन से नैना दा क्या कसूर।

दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक, और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा। दोस्तों चलिए इस हिंदी फिल्मी गीतों के कारवा में सुनते हैं अगला गीत। फिल्म दिल चाहता है का टाइटल ट्रैक दिल चाहता है, जिसे गाया है शंकर महादेवन ने। संगीत के निर्देशक हैं शंकर एहसान लोई, वहीं पे गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों चलिए हिंदी फिल्मी गीतों के इस कारवां में सुनते हैं अगला गीत। फिल्म इश्केरिया से शफकत अमनत अली और अल्तमश फरीदी की आवाज में मीलों के फासले।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart powered tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल की बात. और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का प्यारा सा ये कारवां. दोस्तों चलिए अब आपको सुनाते हैं एक और गीत फिल्म केदारनाथ से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ में, काफिराना. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे अपना गीत का खास पेशकश गैर अते के साथ, जिसके बाद आप जुड़ेंगे कामसेन तांगजांग के साथ हमारे खास कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज के लिए. तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक.

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आपके रेडियो साथी गैर अतर। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना गीत, और पहला गीत हम सुनते हैं पादी तादा की आवाज में अपतन।

मोहब्बत की खूबसूरती ये भी है कि आप एक दूसरे से कितने भी दूर रहो, अलग रहो, फिर भी उनके लिए मन में अच्छी सोच रखना, उनके साथ बिताए पलों को याद कर खुश होना। अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत विरह में तड़पता प्रेमी का दर्द है, जो उन वादियों में आज अकेला है जहां अपनी प्रेमी के साथ वे कभी हसीन वक्त बिताया करते थे। तो चलिए सुनते हैं लम्युक लगो की आवाज में ये आदि गीत।

आप सुन रहे थे देशी जोंगलुजू और निहोन शोजू की आवाज में मीजी गीत। हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, कई बार हम किसी खास के लिए अपने परिवार जिंदगी तक को भूल जाते हैं, पर अगर वही खास अचानक हमारी जिंदगी से चली जाए तो। श्रोता लीजिए पेश है न्योगाम न्योरा की आवाज में मायूसी से भरा एक गालो गीत।

0: वैसे हम इंसानों को एक न एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना तो है ही, पर अगर कोई हमारे बीच से जल्दी हमें छोड़कर चला जाए तो वे हमें तो दर्द के सागर में डालता ही है, साथ ही उनके अपने कई सपने और ख्वाहिशों को भी अधूरा छोड़ जाते हैं। श्रोता, ये सुनते हैं ये दर्द भरा निशे गीत बिजनू नावम की आवाज में, और हम यही चाहेंगे कि कोई भी समय से पहले या बहुत जल्द इस दुनिया को ना छोड़े।
1: दोन नगजी नाम नाग न्योद दोषी दन मृत नाम।

0: केसांग वांगदा द्वारा गाई इस संगीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह के एक और नए अंक के साथ हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरविंद एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
1: वेलकम बैक टू वेस्टर्न मेलोडीज ऑन आकाशवाणी ईटानगर। आई एम योर होस्ट कोको एंड दिस इज डे 4 ऑफ आवर ओजी ऑफस्वर्न ट्रिब्यूट। Today's playlist is all about those big, bold, crowd-shaking anthems. These are the songs that made Ozzy a legend on stage. Full of power, energy, and unforgettable hooks. Whether you are a long-time fan or just getting into rock, this list will shake your soul. Crazy Train is one of Ozzy's most famous songs. It talks about how the world seemed to be falling apart. War, fear, and hate, and how we all feel like passenger on a runaway train. But there's also hope in the message. Maybe we can learn to love and change things.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अभी आप सुन रहे थे दोस्तों वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम कोको लोलो के साथ, और वक्त हो चला है भूले बिसरे गीत के कार्यक्रम का। दोस्तों मैं हूं आपकी आरजे बिंदुंग दिंदो मांझ, और भूले बिसरे गीत में आज की शाम दोस्तों हम ऐसे गाने सुनेंगे जो एक समय में हमारे दिल की रूह बन चुकी थी, हमारी रूह में समा चुकी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उसे भूल चुके हैं। तो भूले हुए गीतों के नाम चलिए करते हैं भूले बिसरे गीत के इस संगम को। वो कहते हैं ना मिर्जा गालिब कि दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, ये इलाही ये माजरा क्या है। ये सिर्फ शायरी नहीं, ये एक ऐसा दिल है जो समझ नहीं पाता कि वो चाहता क्या है, और इसी कंफ्यूजन में मोहब्बत जन्म लेते हैं। चलिए दोस्तों सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, ओपी नैयर के निर्देश किया हुआ गीत, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। मुझे ये गीत काफी पसंद है दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस गीत का आनंद लेंगे। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ।

दोस्तों, फिर आते हैं हम फैज अहमद फैज पर, जहाँ इश्क सिर्फ मोहब्बत नहीं रहता, वो इंतजार बन जाता है। वो कहते हैं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। और फिर आगे कहते हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दोस्तों, ये वो एहसास है जहाँ प्यार टूटता नहीं, बस थोड़ा धीरे बोलने लगता है। इसी एहसास को लेकर चलिए दोस्तों सुनते हैं ये गीत फिल्म मेरे सनम से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हमदम मेरे मान भी जाओ, जहाँ अब आप अपने प्रेमिका को, अपने प्रेमी को मनाने में लगते हैं, शायद जोर से नहीं पर बहुत धीरे से, प्यार से। सुनते हैं ये गीत हमदम मेरे मान भी जाओ।

दोस्तों, भूले बिसरे गीत का ये समय अब थोड़ा और भी ज्यादा महफिलों वाली होने वाली है। थोड़ी सी चांदनी, थोड़ा सा इश्क और बहुत सारा पुराना जमाना, और इस एहसास को और खूबसूरत बनाता है मिर्जा गालिब का एक शेर जो चौदहवीं का चांद की रूह के बिल्कुल करीब लगता है। मिर्जा गालिब फरमाते हैं कि हम तो फना हो गए उसकी आंखों में गालिब, न जाने वो कौन सी अदा थी जिसने बर्बाद किया। मिर्जा गालिब कहते हैं कि हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, गालिब ना जाने वो आईना कैसे देखती होगी। चौदहवीं का चांद सिर्फ एक फिल्म नहीं था, वो एक एहसास था, गुलजार सा महफिलों का नूर और गीता दत्त की आवाज जैसा सुकून। और जब ये शेर उस दुनिया के साथ जुड़ता है तो लगता है जैसे गालिब की शायरी उसी फिल्म के किसी कॉर्नर में क्वाइटली चल रही हो, बैकग्राउंड में बिना क्रेडिट के। चलिए सुनते हैं फिल्म चौदहवीं का चांद से मोहम्मद रफी की आवाज में चौदहवीं का चांद।

दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। हम सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत का ये प्यारा सा संगम और मैं हूँ आपकी RJ मंच। दोस्तों, मिर्जा गालिब ये भी कहते हैं कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। एक बार फिर से सुनिए। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये सिर्फ शायरी नहीं, ये एग्जिस्टेंस का सवाल है और इसी एग्जिस्टेंशियल फीलिंग में इश्क भी छुपा है और दर्द भी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं फिल्म हमराज से महेंद्र कपूर की आवाज में नीले गगन की तले।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, मिर्जा गालिब फरमाते हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी खुद को जांचना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज से आपको दिक्कत हो रही है तो खुद को आईने में देखना जरूरी है, खुद के अंदर के आईने को झांकना जरूरी है, इससे पहले कि हम किसी और को और की शिकायत करें। दोस्तों, चलिए हमारे भूले बिसरे गीत के इस सफर में सुनते हैं एक और आखिरी गीत फिल्म हम दोनों से। मोहम्मद रफी की आवाज में सुनेंगे दिल का भंवर करे पुकार। आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस गीत का आनंद लेंगे।

और दोस्तों, आज की इस खूबसूरत महफिल की आखिरी मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। भूले बिसरे गीत सिर्फ एक सेगमेंट नहीं, ये एक सफर है, लफ्जों से जज्बात तक, शायरी से यादों तक और गानों से उन अधूरी कहानियों तक जो हम सब अपने अंदर कहीं संभाल कर रखते हैं। दोस्तों, यही तो है रेडियो का मैजिक। ये सिर्फ सुनाता नहीं, ये महसूस करवाता है। जैसे एक शेर के अल्फाज कह देते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए और बाकी बात हर दिल अपने तरीके से पूरी कर लेता है। तो दोस्तों, अब वक्त है इस ट्रांसमिशन को धीरे धीरे अलविदा कहने का। अगर आज की शाम आपके दिल को थोड़ा सा सुकून सिखाया हो, थोड़ा सा महसूस करना सिखाया हो, तो समझ लीजिए भूले बिसरे गीत अपना सफर पूरा कर चुका है। मैं हूं आपकी आरजे साथी बिंदु बिंदु मांझ, और ये थी हमारी आज की आखिरी ट्रांसमिशन ऑफ द डे। आप सभी का दिल से शुक्रिया शाम को यादों में बदलने के लिए। आशा करते हैं कि आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे। हम फिर मिलेंगे दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये भले ही हमारा आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन आकाशवाणी के साथ आपका संगम जुड़ा रहेगा, क्योंकि अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले एफएम गोल्ड के लिए। साथ ही मैं बता दूं कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक दी तांगजांग एवं तकनीकी अभियंता बी ड्योरी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
2: जी
3: रहमान बकलम खुद, ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ,
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
1: अब तुम वकील करोगे बेटा?
3: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चान पड़ा है।
1: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
3: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
1: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए। अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियां थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई, उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
1: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
1: फिर इस गाय ही को? बहू
2: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
1: तो फिर करोगे क्या?
3: कुछ तो करना ही होगा।
1: या अल्लाह।

0: नहीं चाहते मियाँ, बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
1: बेचना न होता तो इसे साथ दिए गाँव गाँव न घूमता।
2: अरे लाला छोड़ गया को, भगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रसीदे। अरे खड़ा क्या सोचा, ला
1: रसीदी गाँव कुछ ही नहीं लेते हो भाई,
2: पैसे दे रहे हैं।
0: अरे मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ, बोल क्या इरादा है, यहाँ तुम चुप रहो, मुझे दे रहा है।
3: अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है,
0: आइए आइए मुख्तार साहब। सलाम
2: सलाम
3: सलाम।
0: हुजूर ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता।
2: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
3: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है।
2: हुजूर ये देखिए,
0: गर्दन थाने पुट्ठे
2: और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
3: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
2: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
3: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
2: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
3: दूध देती है?
2: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए, इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूध ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
3: क्या दाम मांगते हो?
2: 50 रुपए हुजूर।
3: हमें तो 35 का माल जचता है।
2: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर, इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
3: देखो अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे, बोलो हाँ या नहीं।
2: क्या कहे हुजूर, चलिए गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुंचा देता
3: हूँ।
2: चलिए
3: रहमान एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं दी?
2: हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गाँव को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
3: तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी?
2: थी सरकार, बड़ी विपत में पड़ गया हूँ,
1: रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
3: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे।
1: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
3: गाय को तुमने प्यार से रखा है वो तो दिखता है।
2: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी, भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। सरकार
3: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
2: हुजूर एक अर्ज और है।
3: क्या?
2: अब तो चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर।
3: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिक्र मत करो। हाँ
2: जी सरकार।
3: बस ये सामने फाटक वाला मकान हमारा है।
2: जी सरकार
3: आ जाओ।
2: जी बाबा
3: ये कोठी सामने वाली गऊ का घर है, आ जाओ आ जाओ। जी बस इन्हीं बांधो खूंटे से है, और देखो इस खूंटे से बछड़े को।
2: जी बाबा
1: बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है।
3: ये लो रुपए गिन लो।
2: जी 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35 ठीक है सरकार ठीक है।
1: अच्छा अब चलो, सलाम हुजूर।
3: अजी सुनती हो, कहाँ हो?
4: आई।
5: हाँ कहो।
3: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
5: क्या?
3: गऊ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
5: सच?
3: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय ज्यादा की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
5: वो कैसे?
3: गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची, वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
5: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
3: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
5: गौ गाय घर में बंधी है ना।
3: आओ चलो चलो दिखाते हैं।
5: चलो
3: अरे आओ
5: चलो चल कर देखिए।
3: मुसला भी बड़ा सजीदा और सुंदर है।
5: अच्छा
3: हाँ
5: चलो।
1: सलाम हुजूर।
3: सलाम। तुम्ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना।
1: जी हाँ हुजूर, जी हाँ।
3: रहमान है ना तुम्हारा नाम।
1: बजा फरमाया हुजूर।
3: कैसे आना हुआ
1: हुजूर? बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है, अम्मा बूढ़ी हैं, हज करना चाहती हैं हुजूर, पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार। आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा।
3: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो
1: जी हुजूर,
3: मैं वादे पर रुपए लेता हूँ, अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे?
1: हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर।
3: अच्छा तो बताओ कब दोगे?
1: सरकार 2 साल की मियाद रख लें हुजूर।
3: ठीक, लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी।
1: ठीक है सरकार, ठीक है।
3: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिस नहीं करूंगा।
1: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
3: दस्तखत कर सकते हो?
1: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
3: ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो।
1: जी हुजूर। रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर।
3: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 है।
1: 180?
3: हाँ हाँ 180, कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली की, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
1: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
3: सलाम।
1: छोड़ मुझे।
0: क्या आया? अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता, चलता है।
1: चल चल रहा।

0: सरकार रहमान को ले आया हूँ।
1: सलाम हुजूर।
2: क्या सलाम हुजूर? 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक न हुई, बुलवाने पर आए हो। क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए?
1: हुजूर।
2: लाओ, रुपए कहाँ हैं?
1: हुजूर, पूरी गर्दिश में हूँ।
2: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए?
1: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर, तभी से बीमार पड़ी हुई है, रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर। जब तक जीती हुजूर कुछ सेवा कर लूं, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
2: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
1: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर, रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हैं हुजूर।
2: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से ओट कर रहे हो कि
1: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला चली हुजूर।
2: 1 साल की मियाद बढ़ा दूंगा, पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ,
1: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
2: ठीक, अब तुम जा सकते हो
1: हुजूर। भाई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर।
2: सलाम।

0: लाला ने क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं माँ, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम न करना।
2: अम्मा,
0: बेटा,
2: अम्मा आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, जी समझ जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: हाँ, उठो उठो। सोने मेरी
1: अम्मा।

0: सलाम हुजूर।
1: तुम क्या करने आए हो?
0: क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
1: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
0: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
1: अरे सुनो
0: जी,
1: जाते कहां हो?
0: सरकार,
1: कैसे आए थे? क्या कुछ काम था?
0: नहीं सरकार, यूं सलाम करने आया था हुजूर।
1: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो।
0: हुजूर, अम्मा।
1: क्या, तुम्हारी अम्मा?
0: हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है।
1: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
0: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं पर हिम्मत नहीं पड़ती। हुजूर
1: कहो क्या बात है।
0: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया, अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
1: ऐसा क्या करना चाहते हैं
0: हुजूर? अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
1: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
0: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
1: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
0: हुजूर? सरकार, 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
1: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
0: सरकार,
1: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
0: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी।
1: यहाँ दस्तखत करो।
0: आपकी बहुत मेहरबानी है।
1: ये लो कलम।
0: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद। ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम।
0: सलाम।
2: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
3: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
2: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथी भी घुसे तो समा जाए।
3: अरे, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
2: अरे मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
3: सुनो।
2: हाँ बोलो।
3: अब के लाला का कर्जा चुक जाएगा?
2: अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
3: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
2: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब के साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
3: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
2: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
3: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
2: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
3: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलिहान में आती,
2: और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
3: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
2: नहीं तो
3: फैसला।

0: ये तो लालू की चपरासी यार, अब क्या होगा? खुदा, अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां ना देने लगे। या मेरे अल्लाह, कहाँ चुप जाओ, कहाँ चुप जाओ।
1: जी, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? नियात कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जबरदार साहब, सारी भूख चल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है कि कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी भूख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत कर।
1: अरे चल चल,
0: मैं खुद चल
1: रहा है। या मैं चल
0: मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावन, बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब ऊख चल गई?
0: सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर ऊख लगी हुई थी सरकार, गरीब परवर, ये रह भी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरिन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर, दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर, अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर, कि आपके रुपए अदा हो जाए। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर, ये कैसे समझ लो, यहाँ ना दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
3: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
3: हाँ रहमान, हाँ।
0: दिल्ली सरकार, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
3: कैसा बोझ, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर, मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
3: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
3: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर,
3: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार।
3: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर, को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
3: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
3: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
0: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर।

मुक्ति धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। NEET UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री CJ ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी कर रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इजराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लालरेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for the country's economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
1: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
0: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata.

0: तक पहुंच गया है।
1: एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
2: संयुक्त अरब अमीरात के हजारों निवासियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित विशाल योग सत्रों ने सामुदायिक स्थलों को स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्रों में बदल दिया। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने दुबई पुलिस के सहयोग से दुबई पुलिस ऑफिसर्स क्लब में एक योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में परिवारों, स्कूली बच्चों, अनुभवी योग प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों सहित सभी आयु वर्ग के 1,500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में दुबई पुलिस बैंड द्वारा एक विशेष प्रस्तुति भी दी गई। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के अंतर्गत मनाया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। श्री गोयल आज मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी। इससे भारत के निर्यात को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों ने स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में उच्च स्तरीय सीधी बातचीत शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच हुए कमजोर अंतरिम समझौते को मजबूत करना और पश्चिम एशिया के संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। इस बातचीत में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि यह जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी उपराष्ट्रपति ने ईरान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और बातचीत मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय स्थिरता और महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने पर केंद्रित रही। अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अमरीका और ईरान के संबंधों को बदलने के लिए एक नई शुरुआत करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के नेता पद से हटने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ आलोचक श्री एंडी बर्नहम को उनका उत्तराधिकारी बनाने की मांग कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तरी इंग्लैंड के मेकरफील्ड उपचुनाव में बर्नहम की निर्णायक जीत के बाद यह मांग और तेज हो गई। उन्होंने नाइजल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी को हराकर भावी नेता के रूप में अपनी साख मजबूत की है। इस बीच श्री स्टार्मर ने कहा है कि वे पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे और नेतृत्व के लिए किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व के लिए कोई चुनाव होता है तो वे पद छोड़ने के बजाय चुनाव लड़ेंगे। अफगानिस्तान के पूर्वी परवान प्रांत में एक वाहन पलटने से 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता फजुल रहीम मुस्कनियार ने बताया कि यह दुर्घटना कोही सफी जिले में मंडी को